नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं, नए प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूँ आरजे चेतन। आज हम एक ऐसे विषय उठा रहे हैं जिसमें स्पष्ट रूप से हम में से कई लोगों की रुचि है, कार्य और जीवन में संतुलन। स्वस्थ जीवन शैली के लिए रणनीतियाँ, चाहे आप यात्रा पर हो, व्यायाम कर रहे हो या बस एक शांत पल का आनंद ले रहे हो, आइए अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन के बीच सामंजस्य स्थापित करने के ठोस तरीके पर गौर करें। जिस दुनिया में हम रहते हैं उसके इस भवंडर में काम और जीवन के बीच उस मधुर स्थान को छूना एक तेज रफ्तार ट्रेन पकड़ने की कोशिश करने जैसी महसूस हो सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि क्या ये सिर्फ एक पहेली से कहीं अधिक है। ये हमारी भलाई को बरकरार रखने और हमारी खुशी के स्तर को ऊपर रखने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। जब तक ये प्रोग्राम खत्म न हो आप आराम से बैठ जाइए, क्योंकि हम कुछ व्यावहारिक रणनीतियों को उजागर करने जा रहे हैं। ये केवल आपकी सामान्य युक्तियाँ नहीं है, ये कार्य प्रतिबद्धताएं और व्यक्तिगत पूर्ति को संतुलित करने का नाजुक नृत्य के माध्यम से शानदार ढंग से चलने के लिए आपके भरोसेमंद रोड मैप की तरह है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस संतुलन क्रिया को थोड़ा और अच्छा संतुलन बनाते हैं। तो अब दोस्तों, इस तथ्य पर हाँ कहकर शुरुआत करें कि उस आदर्श संतुलन तक पहुंचना एक बार की मंजिल के बजाय निरंतर चलने वाला साहसिक कार्य की तरह है। इसे एक यात्रा के रूप में देखें, न कि एक पड़ाव के रूप में। चाल एक ऐसी लाए कि खोज करना है जो आपके लिए क्लिक करती है, कुछ ऐसा जो आपको अपने व्यक्तिगत जीवन और जुनून को बढ़ावा देने के साथ साथ उन पेशेवर कर्तव्यों को पूरा करने देता है। यह सब उस जगह को खोजने के बारे में है जहां आपका काम और व्यक्तिगत दुनिया सामंजस्य स्थापित करती है, एक ऐसा माहौल बनाती है जो विशिष्ट रूप से आपका है। हाँ।

श्रोता, काम में आपके समय का एक बड़ा हिस्सा लग जाता है और ऐसा महसूस होता है जैसे व्यक्तिगत गतिविधियां आपके शेड्यूल में लुका छुपी खेल रही हैं। तो आइए इस बारे में बात करें कि आत्म देखभाल कैसे करें, क्योंकि आप व्यस्त कार्यक्रम के बीच है, तरोताजा और विश्राम के उन क्षणों के हकदार है। तो आइए दोस्तों एक गेम चेंजर पर जूम इन करें, वह है सीमाएं निर्धारित करना। नॉनस्टॉप डिजिटल कनेक्शन के इस युग में काम उस दोस्त की तरह हो सकता है जो अपने स्वागत से ज्यादा देर तक रुकता है। काम के घंटे और व्यक्तिगत समय के बीच एक रेखा खींचना अपना खुद का जादुई मंत्र रखना जैसा है। यह अराजकता में संरचना लाता है और उस भयावह राक्षस के खिलाफ ढाल के रूप में कार्य करता है। दोस्तों, हम सीमाएं तय करने की बात कर रहे हैं। आप जूम कॉल, ईमेल और कार्य से निपटने के एक दिन पूरा करते हैं। आप सोशल मीडिया पर लगातार स्क्रॉल करने के बजाय आप विराम कर सकते हैं। ये सीमाएं निर्धारित करने का जादू है, ये घोषणा करने के बारे में है। ठीक है, काम करो, आपकी बारी है, अब ये व्यक्तिगत समय है। ये न केवल आपके निजी जीवन को काम के बोझ तले दबने से बचाता है, बल्कि आपके मस्तिष्क को भी वह आवश्यक विश्राम देता है जिसका वो हकदार है। काम और फैमिली के बीच तालमेल रखना ही वर्क लाइफ बैलेंस कहलाता है मेरे दोस्तों। इस तालमेल के बिगड़ने से काफी कुछ बिगड़ सकता है, इसीलिए इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। फिट एंड फाइन रहने के लिए लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस का होना बेहद जरूरी है। कामयाबी के लिए घंटों घंटों तक मेहनत करना ठीक माना जाता है, लेकिन कुशल और हेल्थी लाइफ के लिए काम और फैमिली के बीच बैलेंस बनाइए। इसे वर्क लाइफ बैलेंस कहा जाता है। सरल शब्दों में कहे तो काम और फैमिली के बीच तालमेल रखना ही वर्क लाइफ बैलेंस है। आप प्रायोरिटीज फिक्स करें मेरे दोस्तों, प्राथमिकता तय करें। एक समय में एक ही काम करना चाहिए, इसके लिए सबसे पहले प्रायोरिटीज तय करना पड़ेगा। जो काम पहले जरूरी है उसे पहले करना चाहिए और गैर जरूरी कामों को बाद में करें। इससे पर्सनल लाइफ के लिए समय मिल जाता है। काम में जो छुट्टियां मिले उसे सही तरह मैनेज करें, जिससे घर के किसी जरूरी इवेंट मिस न हो। बात समझनी चाहिए कि जिंदगी में जो समय आ रहे हैं वो बीत जाएंगे और दोबारा नहीं आएंगे। फैमिली के साथ दोबारा टाइम भी नहीं मिलेगा, इसीलिए ऑफिस के काम के साथ साथ अपनी फैमिली और पर्सनल लाइफ को भी मैनेज करें। हर किसी के पास एक निश्चित समय है, इसीलिए टाइम को मैनेज करना सीखें। अगर एक काम निश्चित समय पर नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी दूसरे की मदद ले। इसके लिए कभी भी हिचकिचाएं नहीं, इससे काम आसानी से हो जाएगा और थकान भी आप पर हावी नहीं होगा। ऑफिस और फैमिली के लिए वक्त निकालते निकालते खुद को समय देना न भूले। अपनी हेल्थ के लिए खुद के लिए समय निकालना चाहिए। इस वक्त में जो काम आपको खुशी दे वही करें, इससे आप खुद को और दूसरों को खुश रख पाएंगे। हर चीज को पहले से प्लान करके चले, स्पेशली फॉर वर्किंग वुमेन। इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि आप अपनी पूरी दिनचर्या की सही प्लानिंग करें। इसके लिए आपको सही तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट की सबसे पहली शर्त यह है कि आपको वक्त बर्बाद करने के बजाय इसको आपको फोकस करने के लिए यूज करना चाहिए। अपने बच्चों की रूटीन और फिर ऑफिस पहुंचकर वहां के कामों को पूरा करने का प्लान पहले ही करना चाहिए। हर काम का प्राथमिकता तय करें, जैसे कि मैंने आपने पहले बोला कि प्रायोरिटाइज योर वर्क। अपना होमवर्क समय पर करें, अपने लिए कुछ समय निकालें, जीवन साथी से खुलकर बात करें। वर्किंग वुमेन होने के नाते आपकी जिंदगी बिल्कुल सहज और सामान्यता तरीके से चले, इसके लिए आपको अपने जीवन साथी की मदद लेनी चाहिए। उसे हिचक तोड़कर सारी बातें करें और दोनों मिलकर घर परिवार की सारी जिम्मेदारियों को आपस में बांट लें। इससे आपको परेशानी नहीं होगी और काम भी आसानी से मिल बांट कर हो जाएगा। घर का काम ऑफिस, ऑफिस का काम घर पर न लाए। ये भी सुखी जीवन जीने का मूल मंत्र है कि घर के काम को कभी भी ऑफिस में न लाए। प्रोफेशनल की तरह बर्ताव करें और ऑफिस के काम को भी कभी घर पर न लेकर जाए। ऑफिस का सारा काम वही खत्म करके आए। जो महिला घर को और ऑफिस दोनों मैनेज करती है, उनके दिमाग में कई सारे बातें चलती रहती है, इससे इन्हें तनाव भी अधिक होता है, इससे कई बार डिप्रेशन के शिकार भी होते हैं। इसके लिए इन बातों का रखें ध्यान जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ दोस्तों।
जिंदगी में हर बात को बहुत अधिक गंभीरता से न ली

किया करें। किसी भी चीज के बारे में दिन भर सोचते न रहना, सकारात्मक चीजें करें और नेगेटिव बातों को दिमाग में लेने की कोशिश न करें। दिन में कम से कम समय ही सही मेडिटेशन जरूर कीजिएगा। काम को बाद में करने में भरोसा न छोड़ो, इससे आप अपने दिमाग को शांत रखकर अपने मेंटल हेल्थ को खुद मैनेज कर सकते हैं। कहने को ये बात आम लगती है, लेकिन ये सच है, घर परिवार और ऑफिस के चक्कर में कई बार हम खुद को पूरी तरह से भूल जाते हैं, लेकिन सेहत का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपका शेड्यूल कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, अपनी सेहत के लिए थोड़ा वक्त जरूर निकालें। सुबह व्यायाम करने से दिन भर आपका दिमाग और शरीर अच्छा रहेगा। ये भी बेहद जरूरी है कि बड़ी खुशियों का इंतजार न करें। वक्त मिलते ही कम दिनों के लिए सही वेकेशन पर जरूर जाइए, कहीं परिवार के साथ घूमे और कभी बाहर खाने पर चले जाए या कभी फिल्म देखने जाए। कुछ नहीं तो नहीं, अपने घर के आसपास वाले पार्क में जाके वॉक कर लीजिए, अपने दोस्तों से मिलिए, कुछ अच्छा सा काम जो आपको अच्छा लगे करने में, जैसे कि आपके हॉबीज रहे होंगे, आर्ट, पेंटिंग, स्कल्पटिंग, ड्राइंग, म्यूजिक, डांस, जो भी आपको पसंद है ये सब आप कर सकते हैं और अपने आप को खुश रखिए। With this lovely information, this is your RJ Chetan signing off for today. I'll get back to you in our next program. Till then, have a great time. Bye. आप Adventist Media Center द्वारा निर्मित और प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे सुन रहे हैं। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। I repeat 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com।

0: तीन श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ एआई तकनीशियन, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: രചന ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി, സംഗീതം ബേണി ഇഗ്നേഷ്യസ്, യേശുദാസും ചിത്രയും പാടിയ ഗാനം, ചിത്രം രഥോത്സവം.

0: जी,
1: जी।
0: भारतीय मनीषा में अक्षर को ब्रह्म माना गया है और नाद को भी ब्रह्म माना गया है। नाद ब्रह्म की भी हम उपासना करते हैं, हम मानते हैं, लेकिन आज इन गीतों के जरिए और हमने अपने अक्षरों के जरिए जो आपके समक्ष ध्वनि के रूप में आए, हमने उसके जरिए सम्मान दिया है उन शिक्षकों को जिन्होंने अपना जीवन अहर्निश लगा दिया उन छात्रों को शिक्षित करने में।
1: जी, और इन शिक्षकों का सम्मान होता है हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को, जो हमने मनाया
0: जी
1: शिक्षक दिवस के रूप में। और मनीषा जी, शिक्षा का ये तो एक चलन हुआ
0: जी,
1: मगर शिक्षा के और भी कई साधन हैं, बहुत से मार्ग हैं, माध्यम हैं जिनसे हमें शिक्षा मिलती है, और फिल्म भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है।
0: जी हाँ, बल्कि मैं तो कहूंगी कि जिंदगी के पग पग पर हमें शिक्षा मिलती है, लेकिन जैसा जयंत जी ने कहा ना कि मनोरंजन के जो हमारे साधन है उनके जरिए भी हम निरंतर शिक्षित होते हैं। जीवन ही अपने आप में एक बहुत बड़ी शिक्षा है। किसी ने कहा है ना कि जीवन सिखाती बाद में है, पहले परीक्षा ले लेती है। तो ऐसी ही कुछ कहानियां हैं फिल्म इंडस्ट्री में, कई ऐसे किरदार हैं जिनको हमने पर्दों पर देखा है और उनके जीवन के बारे में जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो वाकई बहुत एजुकेट होते हैं और बहुत इंस्पिरेशन, यानी उनसे बहुत ज्यादा

0: हमें प्रेरणा भी मिलती है। फिल्मों में यूं तो नायक नायिका और निर्देशक निर्माता संगीत इन तमाम लोगों से बनकर तैयार होता है एक सुंदर सा गुलदस्ता और फिल्में हमारे सामने आती हैं उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार होता है कॉमेडियन का।
1: जी बिल्कुल, बहुत ही हल्के फुल्के तरीके से हंसते खेलते हुए कुछ न कुछ सिखा जाते हैं ये हास्य अभिनेता।
0: जी हाँ, और एक बात तो माननी पड़ेगी कि एक जमाने में हास्य अपने उच्चतम स्तर पर था। उस जमाने में जयंत जी जो फिल्में बना करती थी उसमें जो हास्य अभिनेता होता था वो बहुत महत्वपूर्ण किरदार होता था और उन पर कुछ डायलॉग्स तो ऐसे बने हैं जिन्होंने उन कलाकारों को अमर कर दिया। अब आप मेरा इशारा समझ रहे हैं मैं
1: बिल्कुल,
0: किस
1: बिल्कुल, और हम आज याद करने वाले हैं जाने माने अभिनेता मुकरी साहब को।
0: वाह,
1: और मुकरी साहब का जिक्र होते ही मनीषा जी बताइए कौन सा डायलॉग याद आता है।
0: अरे शराबी फिल्म का सदी के महानायक अमिताभ जी द्वारा कहा गया वो डायलॉग कौन भूल सकता है कि मुझे हो तो नथू लाल जैसी हो
1: वरना ना हो।
0: और देखिए हमारे चेहरों पर भी हंसी खिल गई क्योंकि
1: और अपने श्रोताओं को बता दें मनीषा जी उनका असली नाम था मोहम्मद उमर मुकरी
0: जी
1: और उनका महाराष्ट्र का जो कोकण इलाका है वहाँ अलीबाग में 5 जनवरी 1922 को उनका जन्म हुआ था और 4 सितंबर है उनका स्मृति दिवस।
0: हम आज मुकरी जी को याद कर रहे हैं और श्रोताओं मुकरी जी के बारे में कुछ और भी हम आपको बताना चाहेंगे कि उन्हीं फिल्मों में जो पहला ब्रेक दिया था
1: जी
0: वो ब्रेक दिया था देविका रानी जी ने और उनके बारे में जो सिफारिश की थी वो थे उनके स्कूलमेट दिलीप कुमार साहब। उन्होंने देविका रानी जी से कहा था कि इन्हें मौका मिले और उनकी पहली फिल्म आई थी प्रतिमा जिसमें उन्होंने दिलीप कुमार जी के साथ अभिनय भी किया था।
1: जी बिल्कुल, बॉम्बे टॉकीज की ये फिल्म थी और उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ तो 600 फिल्मों में हमने उन्हें देखा।
0: बताइए इतने बड़े कलाकार और तकरीबन 50 वर्ष तक का उनका जो फिल्म इंडस्ट्री को कॉन्ट्रीब्यूशन है उसे कौन भूल सकता है।
1: बिल्कुल, और जिस तरह से नथुलाल याद आते हैं वैसे एक और किरदार है, फिल्म का नाम है अमर अकबर एंथनी
0: तैयब अली। ऐसे बहुत ही अमर किरदारों को उन्होंने पर्दे पर उतारा जयंत जी।
1: तो मुकरी साहब की कौन सी नायाब रिकॉर्डिंग हमारे श्रोताओं के लिए आप लेकर आई हैं मनीषा जी?
0: एक रिकॉर्डिंग है हमारे पास जयंत जी और देखिए इस रिकॉर्डिंग में बल्कि सुनिए इस रिकॉर्डिंग में मुकरी जी ने किस बेबाकी से और कितनी जिंदा दिली के साथ अपनी बात कही है कि सुनते सुनते आपको बहुत आनंद आएगा। तो पेश खिदमत है ये खास रिकॉर्डिंग मुकरी साहब की, आइए श्रोताओं सुनते हैं। ये हम आपके लिए खास तौर पर लाए हैं विविध भारती के संग्रहालय से चुनकर।
2: सुनने वालों को मेरा नमस्कार, आप तो मेरी आवाज से पहचान गए होंगे कि मैं कौन बोल रहा हूँ। मेरा नाम है मुकरी। आप तो समझ गए होंगे, कद वगैरह तो आपने पर्दे पे देख लिया है। वैसे मेरा जो गानों का टेस्ट है वो एक अजीब किस्म का है। मैं गानों में शायरी और धुन को बहुत ही नजाकत और उसके अंदर सही अल्फाज वगैरह चाहते हैं। मैं ये नहीं चाहता वो जैसे आजकल गाने तूने देखा मैंने देखा मैंने सुना तूने सुना आप पीपल के झाड़ के नीचे प्यार करेंगे वो ये चीजें मुझे साहब बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि गाना हो तो जरा मजे का तबीयत खुश हो जाए यानी एक मूड आ जाए एक किसी चीज में खो जाए ये वो गाने। जैसे मसलन एक गाना मैं आपको सुनाता हूँ लेकिन गाना सुनाने से पहले मैं उसका जरा आपको उसकी स्टोरी सुनाऊं कि क्या हुआ। जब साहब मेरी शादी हुई मतलब शादी हो रही थी तो उसमें शादियों में जो रस्म और रिवाज होते हैं तो हमने हमारी बीवी को कभी देखा ही नहीं। हमारे माँ बाप ने हमारी शादी हमारे फिल्म लाइन में होते हुए भी मैं एक ऐसा शख्स हूँ जिसने अपनी बीवी को ही नहीं देखा और शादी कर दी। अब हमको ये फिक्र रही उसके पता नहीं कितने लंबे दांत होंगे कितनी ना बड़ी नाक होगी क्या होगा चीक चीक के दाग होंगे पता नहीं। इंसान अपने अपने ख्याल में कुछ न कुछ सोचता रहता है लेकिन जब हमारे सामने उस रस्म में आईना लाके रखा तो हमने देखा वाह वाह हमारी बीवी गोरी चिट्टी है मुझे बड़ी पसंद आई। लेकिन जब उसने मेरा मुंह देखा तो उसने ये गाना शुरू किया।

0: थे।
1: महमूद साहब ने एक पिक्चर का प्रोग्राम बनाया। महमूद साहब मुझे बड़ा तकदीर वाला समझते हैं। वैसे वाकई में मेरी कुछ कुदरत की बड़ी मुझ पर मेहरबानी है और मैं बड़ा खुदा से और भगवान से और जो ईश्वर से जिससे आपका आप हर एक के अपने अपने जो है उससे मैं बहुत डरता हूँ। और न किसी का दिल दुखाना, न किसी का गिबत करना, न किसी की बुराई करना, इन चीजों से अपने को कोई लेना देना नहीं। काम अपने को मिलता है, रोटी अपने को मिलती है, रहने को अच्छी तरह से मिलता है, तो फिर इन तमाम चीजों से मतलब क्या है। और सबसे बड़ी बात कि आपने को किसी किस्म की लालच भी नहीं है। तो महमूद साहब जब प्रोग्राम में वो कहते हैं यार तू तो बड़ा लक्की है, मैं हर मेरी पिक्चर तेरी वजह से हिट हो जाती है क्योंकि मैंने उसके पड़ोसन में काम किया, कुंवारा बाप में काम किया। तो जब ये महमूद साहब पिक्चर बना रहे थे जनता हवलदार, तो बस बार बार मेरे आ रहे रोज खाने पीने खाने कहने लगे कि मैं और तू दोनों इस पिक्चर में क्या तेरा रोल होगा और ये होगा वो होगा। तो जो राजेश खन्ना साहब ने जो रोल किया था वो तो बोले मैं कर रहा हूँ और मेरा रोल तू कर रहा है। बाद में गोलियों के चक्कर में उन्होंने उनका रोल जो था वो राजेश खन्ना को दिया और मेरा रोल जो रोल था वो खुद ने कर दिया। उसके बाद पिक्चर हो गई फ्लॉप, पिक्चर की डिलीवरी भी नहीं गई। तो जिस दिन आए फिर मेरे यहाँ, तो मेरे उनका यहाँ फैमिली रिलेशन है, तो मेरी बीवी ने खाना भी ना लगा। मैंने कहा महमूद तू बड़ा उदास मालूम हो रहा है, तो कहने लगा यार वो मैं गाना लगाता हूँ, वो मुझसे क्या भूल हुई जिसकी सजा मुझको मिली। मैंने बोला वो सजा ये मिली कि तूने मेरे को नहीं लिया ना पिक्चर में, इसलिए वो तेरे को सजा मिली कि डिलीवरी नहीं गई।

जब मैंने हीरा के अंदर सुल्तान अहमद साहब की पिक्चर में काम किया हीरा में, तो कल्याण जी आनंद जी साहब ने कहा कि भाई जो ये गाना मुकरी का है ये किसी गाने वाले से नहीं, हम मुकरी से गवाएंगे। सुल्तान अहमद कहने लगे

मुगरी कैसे गा सकेगा, वो तो गाना गाता ही नहीं। कहने लगा नहीं हाँ हम उससे गवा लेंगे। तो किशोर कुमार साहब ने जो मेरे साथ जो सुनील दत्त का प्लेबैक दे रहे थे वो गाना किशोर साहब ने मेरे साथ जरा मेहनत की उस गाने में और मैंने वो खुद गाना गाया। वैसे पहले बॉम्बे टाकीज में मैं पहला, मुझे जब बॉम्बे टाकीज में दिलीप कुमार साहब के साथ काम मिला प्रतिमा में, जो मेरा रोल था जिससे मैं फिल्म आर्टिस्ट बन गया, तो एक गाना था ठुमक ठुमक क्यों छनन मेरे अंगना आवजी अजी आवजी अजी आवजी आवजी ठुमक ठुमक। ये गाना साहब महमूद के वालिद मुमताज अली साहब ने मुझे बराबर इसकी रिहर्सल वगैरह करवा के मुझे तैयार किया और ये मैंने खुद अपने से गाया। वैसे मैं कोई गाना बिना गाने वाला तो मुझे आता नहीं है, ना मुझे ताल सुर का पता रहता है, लेकिन ये गाना गाया था और मैंने फिर ये गाना गाया जो हीरा के अंदर मैंने गाया, वो सुन लीजिए। मैंने मेरी अपनी आवाज है मन के अंगना एक मतवाली मैं

0: I said, no, मैं professional नहीं, मैं तो स्कूल का स्टूडेंट हूँ, स्कूल की तरफ से आया हुआ.
1: क्या उम्र रही होगी?
0: I think 13 साल का हुआ मैं. तो बाद में जब सपन अंकल से मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला तुम बॉम्बे आना चाहोगे, तो मैं ऐसा सब बोलते हैं बट कोई बुलाता नहीं है. बोले नहीं, एक शर्त पे, तुम जब फर्स्ट क्लास फर्स्ट आओगे उसके बाद तुम बॉम्बे में आ जाना, मैं तुमको रखूंगा अपने साथ. तो अब उन्होंने एक जो थी एक लालच तो दे दी थी बॉम्बे की, और मुझको अपने सपने आने लगे बॉम्बे के कम उम्र में ही. तो मुंबई के मुझको उस समय सपने आने लगे, और मैं भी सोचने लगा कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या वो वाकई में मुझको यहाँ बुलाएंगे. और मैं मेहनत पढ़ाई में मैंने चालू कर दी, और वो दिन आ गया जब मैंने 11th का एग्जाम दिया, तो मैं सीधा बॉम्बे आया. वाकई मैं रिजल्ट के लिए वेट नहीं किया, मैंने एग्जाम दिए और आ गए. मेरे को जब आया तो मैं यहाँ अंकल के पास आया तो बोले अरे तुम तो सचमुच में आ गए. तो मैं कहा आपने बोला था इसलिए आ गया मैं.
1: रिजल्ट के बारे में नहीं पूछा आपसे?
0: पूछा उन्होंने कि रिजल्ट, मैं कहा रिजल्ट तो अभी नहीं, मैं एग्जाम दे के आया हूँ, तो 2 महीने अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर चला जाऊंगा. तो बोले अच्छा. फिर उन्होंने काफी समझाया, और इधर के हिसाब से ट्रेनिंग, फिल्म इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेनिंग वगैरह चालू हुई. बहुत स्ट्रगल किया मैंने, इतनी स्ट्रगल की है इस लाइन में. जो आज मेरे सीनियर म्यूजिशियन है, जो आज मेरे साथ बजाते हैं एज ए म्यूजिशियन, वो हमेशा उनकी हर किसी की मैंने दुआएं लेके और आशीर्वाद लेके इस लाइन में कदम रखा.
1: पहली फिल्म कौन सी मिली आपको?
0: सबसे पहली फिल्म मैंने की एक कन्यादान, जो सुधाकर बोकाडे जी ने फर्स्ट ब्रेक दिया मुझको. और जैसा कि हर इंटरव्यू में मैं बोलता हूँ, एक आदमी का नाम इसमें हमेशा लेता हूँ जिसने मेरे को ये फिल्म दिलाई थी, वो थे जैकी श्रॉफ. फिर सुधाकर बोकाडे जी आए एंड सिटिंग की, और एक ही दिन की सिटिंग में उन्होंने कुछ 32 सॉन्ग्स निकाले मेरे से, उसमें से फिर हमने सेलेक्ट किए. तब जाकर उनकी लगातार मैं 4-3 फिल्म उनकी कर चुका हूँ, अभी चौथी फिर उनकी लॉन्च होने वाली. सेकंड फिल्म थी फिल्म आओ प्यार करें, रिलीज पहले वो हो गई. तो उसका गाना था, बहुत पॉपुलर हुआ था, हाथों में आ गया जो कल रुमाल आपका, ये काफी हिट हुआ. बट एक और गाना था, चांद से पर्दा कीजिए कहीं चुरा ना ले चेहरे का नूर. और क्योंकि एक गाना और था जिसमें पूरी पोएट्री थी, क्यों फूल खिलते हैं, स्पेशली वो गाना इसलिए अच्छा था लगा मुझको क्योंकि बहुत अच्छा लिखा था श्याम राज जी ने, और गाया था इसको कुमार शानू और विजेता ने.
1: आपकी बहुत सारे जो गीत उनमें विजेता जी का बहुत नाम आया, और आपकी वो जीवन संगिनी है, और ये माना जाता है कि हर सफल आदमी के पीछे एक स्त्री का भी हाथ होता है. ऐसी जीवन संगिनी पा करके आपको अपने जीवन में क्या बदलाव, रचनात्मक बदलाव महसूस हुआ?
0: विजेता का, जैसे आपको बताऊं मैं कि विजेता से शादी करने के बाद मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई, मेरा कैरियर चेंज हो गया. और कई लोग उससे इस मामले में चिढ़ते भी हैं कि इसने जो है इसको चेंज कर दिया. अच्छा था, म्यूजिशियन था, हमारे साथ काम करता था, अब म्यूजिक डायरेक्टर बन गया. तो म्यूजिक डायरेक्टर बनाने में उसका हाथ नहीं है, लेकिन मेरे को चार्जअप करने के लिए कि तुम जिंदगी भर म्यूजिशियन बन के क्या करोगे. और जब अच्छा मेरा क्या था कि मैं गाने, आपको बताऊं मैं एज ऑफ व्हेन आई वाज जस्ट 10 इयर्स ओल्ड, और मैंने 20 सूत्री कार्यक्रम चले थे तब गाना बनाया था मैंने इंदिरा जी के लिए जबलपुर में. तो मेरे को एक था कंपोजिशन का एक शुरू से शौक था. फिर बॉम्बे आके मैं 79-80 से मैं गाने बना के रखता जा रहा था. मेरे पास स्टॉक में कम से कम 2000 गाने थे उस समय,
1: अपना एक बैंक
0: बना के रखते. मेरी मम्मी पूछती थी तू बुला किसी को, सुनाता तो है नहीं, तू बनाता ही रहता ऐसा क्यों. मैं कहा अभी नहीं, जब होगा तब सुनाऊंगा. तो ये ऐसा होता था शादी के पहले, माँ मेरे को काफी वो करती थी,
1: कंट्रोल करती थी.
0: शादी के बाद विजेता आ गए तो विजेता ने बोला कि ना, तो फिर मैंने फिर डिसाइड किया कि क्योंकि मैंने सोचा था कि जब मैं म्यूजिक डायरेक्टर बनूंगा फिर मैं एज ए म्यूजिशियन कहीं पे भी काम नहीं करूंगा. बड़े भाई हैं, उनने भी काफी मुझको इसमें सपोर्ट किया. मेरे स्ट्रगल पीरियड में जब मैं बॉम्बे आया तो वो मेरे साथ थे यहाँ पे, और आज भी उनका आशीर्वाद है मेरे साथ. बट वो जबलपुर में है, मैं बॉम्बे में हूँ. आज भी मैं जैसे बनारस अभी गया था मैं बीच में, तो बनारस में इतना प्यार, वहाँ पे एक इंटीरियर में इतना प्यार मिलता है जब उनको पता चलता है तो कि फिल्म लाइन से जुड़े हैं, गाना सुनते हैं लोग, तो इतना वो लोग इज्जत और इतना मान सम्मान देते हैं और उससे ज्यादा प्यार देते हैं.
1: आदेश जी, आपकी यादों में कहीं बचपन के किसी उम्र के हिस्से में रेडियो किसी रूप में जुड़ा रहा?
0: मैं जबलपुर में था तो एक शाम को 6 बजे प्रोग्राम होता था युववाणी का. वो युववाणी में होता था कि MP के सब कलाकारों को मौका मिलता था, फिर उसमें मैंने भी गाया था. लेकिन जब तक गाया नहीं था तो मैं शाम को 6 बजे वो बैंड वाला रेडियो होता था, वो धागा रखता था उसमें. और मेरे मोहल्ले में बाई के बगीचे में सब सबसे बड़ा रेडियो मेरे घर में ही था, सब आ जाते थे सुनने के लिए। फिर मैं वो लाउड करके तमाम उसमें एम्पलीफायर वगैरह लगा के मैंने और स्पीकर एक्स्ट्रा लगा के लगाता था। इंटीरियर में आज भी हमारे जो देहाती खुशबू जिसको बोलते हैं जो गांव में, आज भी रेडियो को ही ज्यादा महत्व देते हैं और आज भी

0: विविध भारती ही सुनते हैं, क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूं कि मैं अपने चाहने वालों से बात करूं और उसका जरिया है विविध भारती का ये प्रोग्राम।
1: मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अपने बचपन के और कॉलेज के जमाने में वो कौन से गीत खास उससे आप गुनगुनाया करते थे?
0: मेरा एक फेवरेट गाना था, मैं बहुत गाता था वो, कांटों से खींच के आंचल।
1: अच्छा, क्या वजह थी इसकी?
0: ये उसका अरेंजमेंट बहुत अच्छा लगता था मुझको, और फिर उसके बाद मेरे को मदन मोहन जी के गाने बहुत अच्छे लगते थे। मुझको सबसे ज्यादा पसंद थे किशोर दा।
1: अच्छा।
0: किशोर दा के गाने बहुत गाता था मैं, स्टेज पे भी गाता था और फिर रफी साहब के गाता था। किशोर दा के मैं एक्सप्रेशन का बहुत, वो जो एक उनमें कला थी, जिस आर्टिस्ट के लिए गाते थे ऐसा लगता था वो वही आर्टिस्ट गा रहा है।
1: मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि संगीत के सुरों के लिए वो जो एक लगाव होता है वो आपके अंदर पहले से था और घर में ऐसा कोई माहौल था जिससे आपको और ज्यादा प्रेरणा मिली?
0: ये क्या था कि बचपन से ही घर में ऐसा था कि म्यूजिकल माहौल था मेरे, बट शौकिया तौर पे था। और उसके बाद फिर वहाँ जब जबलपुर से यहाँ आया तो यहाँ पे मैंने जो गुणी जनों के साथ जो काम करने का मुझको मौका मिला, मैं सोचता हूँ मैं बहुत लकी था। बिगनिंग में साल दो साल भर पंचम दा के साथ भी था मैं, और मैंने काम किया शंकर जी के साथ भी एज ए म्यूजिशियन, ओपन ईयर साहब के साथ, सलील दा के साथ भी मैंने ये मौका मिला मुझको। और उसके बाद भी मैंने 1982 में ज्वाइन किया था अपना श्री लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को, जो कि लक्ष्मीकांत जी और प्यारेलाल जी का जो काम करने का जो एक तरीका एक जो ढंग वो एक ऐसा लगता था कि ये स्कूल है, और वहाँ इतनी सारी चीजें सीखने को मिली, और मैं सोचता हूँ कि उसी के कारण आज वही प्लस पॉइंट है मेरे लिए। और आज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी जो जितनी लंबी इनिंग उन लोगों ने खेली है और आज भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं सोचता हूँ कि आज के जितने भी नए संगीतकार हैं वो कोई भी सोच भी नहीं सकता उनके बारे में। जब मैंने ज्वाइन किया था उनको तो उत्सव की रिकॉर्डिंग बेला महका रे महका,
1: बहुत खूबसूरत,
0: फिर बैकग्राउंड म्यूजिक था उत्सव का, उसमें मैं जब बजा रहा था तो उसमें लयकारी थी पूरी, और जो प्यारे जी ने किया था अरेंजमेंट उसमें 9 मात्रा 6 मात्रा ये सब कुछ आवर्तनों के बाद आके एक साथ सम आता था, और मुझको जो सौंपा गया था वो था सम देना। तो अगर मैं किसी कोई आड़े को सुन रहा हूँ, अगर कान मैंने ध्यान दिया तो मेरा सम गया। और फिर पंचम दा की जो मैं मजा आया, उनके एक रिदम का एक अलग था क्लियरिटी, उनकी हर रिकॉर्डिंग में क्लीननेस बहुत, कि अगर एक खंजरी टैमरिन बज रही है तो एक उसका कुछ अगर बीट रखी उन्होंने तो उसकी एक अहमियत उस बीट की है। दिखने में छोटा इंस्ट्रूमेंट है बट वो आपको रजिस्टर हो जाएगा, कभी बोल ना बोल के साथ वो आएगा ही आएगा। जैसे ट्रायंगल एक था, ट्रायंगल का यूज बहुत किया पंचम दा ने अपना हम किसी से कम नहीं के गानों में भी किया था, और पहाड़ी तो खैर बहुत उन्होंने यूज किया पहाड़ी राग में।
1: आपकी म्यूजिक की विशेषता क्या है जिसमें आदेश श्रीवास्तव एक मौलिक संगीतकार के रूप में नजर आता है?
0: देखिए मेरा क्या है कि मैं बहुत ओरिजिनल आदमी हूँ, मैं आर्टिफिशियल चीजों से बहुत चिढ़ता हूँ मैं, तो वही चीज मैंने अपनाई है अपने म्यूजिक में भी। तो मेरा ये रहता है कि मैं हमेशा अपना अलग गाना छाप छोड़ूं। लोगों ने खूब आइटम दिए, लोगों ने डबल मीनिंग्स गाने दिए, बट मैंने कहा कि नहीं, उस दरमियान जो था मैंने कहा नहीं, मैं कोई मेलोडी पकड़नी।

0: श्रोताओं, मशहूर संगीतकार आदेश श्रीवास्तव जी की ये रिकॉर्डिंग हमने सुनी। आपसे बातचीत की थी कमल शर्मा जी ने। ये रिकॉर्डिंग जो थी ये हमारे संग्रहालय से हम ढूंढ कर लाए थे और आदेश जी को याद कर रहे थे। हमने आज आपको इस कार्यक्रम का संपादित अंश सुनवाया। कभी मौका मिला तो आपको इस कार्यक्रम को पूरा भी सुनवाएंगे। आज की विविधा के अब हम अंतिम सेगमेंट पे आ गए हैं जहां एक बहुत महत्वपूर्ण रिकॉर्डिंग हमारे पास है।
1: जी मनीषा जी, हमने एक संगीतकार को याद किया और एक और संगीतकार को याद करेंगे जो अपने आप में बहुत महान संगीतज्ञ थे, डॉक्टर भूपेन हजारिका।

0: इस अमर गीत के गायक
1: जी
0: असम के डॉक्टर भूपेन हजारिका, बल्कि मैं कहूंगी असम ही क्यों, पूरे भारत वर्ष के हमारे डॉक्टर भूपेन हजारिका, पूर्वोत्तर के संगीत को पूरे भारत वर्ष में प्रतिष्ठित करने और लोकप्रिय करने का महत्वपूर्ण दायित्व डॉक्टर भूपेन हजारिका ने संभाला था।
1: जी, इस महान कलाकार का जन्म 8 सितंबर 1926 को हुआ था असम के सदियां ग्राम में।
0: हाँ।
1: और हम उन्हें इसी उपलक्ष्य में आज याद कर रहे हैं। मूलतः इन्होंने असमी भाषा में बहुत से गीत तैयार किए और ये बाद में अनुवादित हुए बांग्ला और हिंदी में।
0: वैसे कई भाषाओं में उनका रचना संसार अनुदित हुआ, लेकिन बांग्ला में बहुत अधिक पाया जाता है और बांग्ला के बहुत अच्छे जानकार थे डॉक्टर भूपेन हजारिका।
1: और इनके गीतों में विश्व बंधुत्व और एकात्मिकता की बात हमेशा ये करते रहे।
0: जी हाँ, संगीत तो वैसे सार्वभौमिक सार्वकालिक होता है और जब ऐसे सुदूर पूर्वोत्तर के अंचल से आई हुई खुशबू हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में महकने लगी, तब हमारा हिंदी का जो सिने संसार है वो और अधिक समृद्ध हुआ। डॉक्टर भूपेन हजारिका की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिकॉर्डिंग हमारे पास है जिसे हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे। वैसे इस रिकॉर्डिंग की एक खासियत है, इसमें भूपेन जी ने बहुत सारी बातें की लेकिन हम उसका चूंकि कुछ अंश अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे। उन्होंने उसमें संगीत के, खासतौर पर लोक संगीत के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं और ये जो रिकॉर्डिंग है इसके लिए हम हमेशा याद करते हैं छाया गांगुली जी को, जिन्होंने डॉक्टर भूपेन हजारिका जी की ये इम्पोर्टेंट रिकॉर्डिंग हमें दी है, विविध भारती के लिए की है, तो उन्हें भी धन्यवाद देते हैं। और आइए सुनते हैं इस अमर रिकॉर्डिंग को, ये हमारे पास एक बहुत बड़ी धरोहर है। डॉक्टर भूपेन हजारिका जी से बातचीत की है राम सिंह पवार ने।

0: भूपेन जी अपने उभरते बाल्यकाली के बारे में कुछ कहेंगे।
1: मैं एक साधारण सांस्कृतिक मजदूर हूँ और हमारा सदिया गांव जो है उत्तर पूर्व भारत सीमांत में है
0: जी।
1: अभी अरुणाचल और आसाम के बॉर्डर में है
0: जी।
1: तो वहाँ यहाँ नदी वहाँ पहाड़ सब के बीच हम कूद के खेल के बड़े हुए थे। हमारे माता जी बहुत अच्छा गाते थे, वो बंगाली रविंद्र संगीत गाती थी
0: जी
1: माँ, और पिताजी वैष्णव संगीत गाते थे, स्कूल टीचर थे
0: जी।
1: पिताजी स्कूल टीचर थे
0: जी।
1: तो वातावरण संगीत का था घर में, तो इसलिए यहाँ पारिपार्शिक जितना छंद है जितना सुर है वो तो आया उसी के,
0: ये तो विरासत में
1: जी। हाँ अभी भी याद है माँ गाती थी ललेबाई।

0: কৰিব মোৰ, মই নাই বুটলি খাব, আমাৰে মই না খুব। श्री कृष्ण के बारे में यशोदा कह रहे हैं कि भाई सो जाओ, ओ कृष्ण श्रीगाल आके तुम्हारा कान ली जाएगा, नहीं तो सो जाओ, जल्दी सो जाओ। গোরে কানে খোয়া খে সকল শিশুর কান খাই খাই ও আশয় তোমার পাশে। ই সব টিউন কে উপর ও বিহুরেন বিরিনা ও আই থাকে মনি থুরিয়া, ও বিহুরেন বিরিনা ও আই থাকে মনি থুরিয়া। ये सब छंद में ब्रह्मपुत्र के किनारे खेल कूद के बड़े हुए।
1: इस बाल्यकाल के दौरान आपके शिक्षा संस्कार, आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में,
0: कैलकट यूनिवर्सिटी के अंदर तेजपुर गवर्नमेंट हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया 14 साल उम्र में, इंटरमीडिएट गुवाहाटी के कॉटन कॉलेज में किए। उसके बाद लड़ाई आया, महायुद्ध आया, अंधेरा हो गया आसाम, तो हम कलकत्ता में चले आए थे। उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आए थे, बीए एमए पॉलिटिकल साइंस में एमए किए थे हम
1: जी,
0: बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से 1946 में। उसके बाद हम जाके थोड़ा राजनीति पढ़ाया एक छोटा कॉलेज में गुवाहाटी में। उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन किया, ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन करके पिक्स हो गए थे, शिलोंग गुवाहाटी स्टेशन ओपन किया हम लोगों ने। उसके बाद दिल्ली आए थे, उसके बाद भारत सरकार हमें एक मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स डिग्री करने के लिए न्यूयॉर्क भेजा
1: जी,
0: कोलंबिया विश्वविद्यालय।
1: मास कम्युनिकेशन में पीएचडी करने तक और इस बीच पढ़ाई के दौरान निश्चय ही आप संगीत से तो जुड़े रहे।
0: हाँ।
1: तो क्या हम आपसे आपका अपना क्रिएशन जनगीत थोड़ा सा गुनगुना,
0: मैं सुनाना चाहता हूँ मेरा बहुत मशहूर डोला वाला
1: जी।
0: उसमें हम सोशल कॉन्शियसनेस देना चाहते थे
1: जी,
0: दायबद्धता जो है एक सॉन्ग राइटर का वही देना चाहते थे हम। डोला प्रतीक है शोषण के, डोला राजा महाराजा लोग जाते हैं, तो यहाँ भी जब क्रिएट करने लगे हम
1: जी,
0: आधुनिक गीत बोलने से हमें दुख होता है क्योंकि आजकल आधुनिक गाना सुन के कभी डर जाता हूँ। डोला के बारे में कहना चाहता हूँ कि हमारा इसमें जिसको सब मिला, प्राचुर्य और अभाव का जो संघात होता है उसी को हम गतिशील करके सतर्क कर देना चाहते थे।
1: बहुत
0: डोला डोला डोला।

0: भूपेन जी, स्वतंत्रता के पहले कुछ अपने जीवन की अनुभूतियाँ।
1: गांधी जी जी हमारे आसाम में कभी कभी आते थे जब, तब मेरे पिताजी का नाम है नीलकंठ हजारिका है, तो गांधी जी आके कहते हैं कि वो हजारिका का दो बच्चा है, भूपेन और बहन का नाम था सुदक्षिणा, ये दोनों का भजन सुनना चाहते हैं। तो पहले हमें आशीर्वाद मिला था महात्मा गांधी दोनों, वो क्या गाए थे वो भी एक ब्रजावली भाषा में, आसाम के पुराना असमिया में थे।

0: शंकर देव की अनुभूति, गांधी जी की अनुभूति, इसमें बड़े हुए हैं हम लोग। इसके ऊपर और दो महान कलाकार थे, असम के ज्योति प्रसाद और विष्णु प्रसाद
1: जी।
0: ये दोनों बहुत बड़ा विप्लवी कवि थे और कंपोजर थे। ये दोनों हमें ऐसा इंस्पायर किया था कि 13 साल में हमने भी लिखना शुरू किया। अग्नि युगर फिरिंग अतिमय नतुन अहम गोढ़ीम नतुन भारत गोढ़ीम नतुन भारत गोढ़ीम सर्वहारार सर्वस्व पुनर्फिलाय आनीम। सर्वहारा का सर्वस्व हम फिर लोटा के ले आएंगे, एक नया भारत बनाएंगे जहाँ धर्म व्यवसायी था नहीं था, जहाँ धर्म व्यवसायी का जगह नहीं रहेगा इत्यादि। तो 13 साल उम्र में वो लिखे थे। एक बात है कि हमारा असम पूर्व प्रांत में है, वहाँ है चाइना, इधर बर्मा है, यहाँ तिब्बत है। तो हम लिखे थे कि हम कुछ प्रतिध्वनि सुन रहे हैं और ट्यून भी ऐसे किए थे, दर डा डा डा डा डा प्रतिध्वनि सुनो प्रतिध्वनि सुनो प्रतिध्वनि सुनो मैं प्रतिध्वनि सुनो मोर गावरे सीमारे पहाड़ीर सीपार नतुन सियार तीर प्रतिध्वनि सुनो। I listen to the new sounds that is coming beyond, from beyond the hills. I don't know what are there. Pratidhani, एक इंडियन यंगस्टर का ये मन का एक इच्छा है कि एशिया में और कहाँ कहाँ क्या है चारों तरफ। आज सुनाना चाहता हूँ, ये असमिया गाना का ब्यूटीफुल ट्रांसलेशन किए थे हमारा शिवदास बैनर्जी, बंगाल के कवि, गीति कवि। प्रतिध्वनि सुनी और प्रतिध्वनि सुनी।

0: आजादी से पहले स्वतंत्रता के लिए चहुमुखी प्रयास किए जा रहे थे। गीत संगीत अभिनय फिल्म और रंगमंच ने भी इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई है। और आप भी उस समय इप्टा इंडियन पीपल्स थिएटर ग्रुप से जुड़े हुए थे, तो उस समय के कुछ संस्मरण और उस दिशा में आपके प्रयास।
1: अमेरिका में हम जब डॉक्टरेट कर रहे थे
0: जी,
1: तब सौभाग्य हुआ था पॉल रॉबसन से मिलने का। उसके बाद उनके पीपल्स सॉन्ग जो थे सारा दुनिया, जैसे ओल्ड मैन रिवर, यू डोंट से नथिंग, यू जस्ट कीप रोलिंग अलोंग, ये सब जब सुना वहाँ, सारे चार साल के बाद जब ब्रह्मपुत्र के किनारे फिर चले आए, तब इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन बहुत बड़ा काम कर रहे थे, यूनिफिकेशन ऑफ कल्चर। उसमें कैफी आजमी साहब थे, सलील चौधरी थे गाने में, हम लोग क्रिएट कर रहे थे, भूपेन हजारिका आसाम में, सुरेंद्र कौर पंजाब में, जसवंत ठाकुर बड़ौदा में, इसके बाद थिएटर में शंभु मित्र, उत्पल दत्त, बलराज सहनी यहाँ बॉम्बे में। तो उसमें हम लोग एक नया कंटेंट देना चाहते थे लोक संगीत वगैरह को, फिर उद्धार करके, पुनरुद्धार करके उसको ठीक से फिर नया क्रिएशन में लोक संगीत के ऊपर रचनाएं करके हम लोग स्टेज, फिल्म, माइक्रोफोन, मोशन पिक्चर, स्टेज,
0: तो आजादी के आंदोलन में सबके द्वारा आपने
1: तो स्वाधीनता के बाद इप्टा ज्यादा ये हुआ था।
0: हाँ जी।
1: और हम आके ज्वाइन किए थे अमेरिका से लौट के आए थे 52 साल में, आफ्टर माई PhD इन मास कम्युनिकेशन। तो यहाँ आके जब गाना लिखना शुरू किया, चाय बगान है हमारा असम में, हाईएस्ट बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द होल वर्ल्ड इज असम, तो वहाँ उन लोगों के बात कह के टू लिप्स एंड ए बड, आदमी आज टू लिप्स और एक बड हो गया, और कौन इनको डिस्ट्रॉय करने आए हैं, ऐसा एक रिवोल्यूशनरी नहीं है लेकिन सोशल कंटेंट स्ट्रांग था। तो उसी वो एक एटी कोली दूटी पाट रतनपुर बागीसात लह पोहिया हाथे रे कोने नो सिंगीले ओ कोने नो सिंगीले, इसे को हमारा गुलजार भाई,
0: अच्छा
1: मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और हमें समझते भी है
0: जी,
1: तो हिंदी में रूपांतर करके ये प्रचार कर रहे हैं अभी भी। एक कली दो पत्तियां, और गुलजार भाई खुद प्रेजेंट किए हैं और कमेंट्री देके।
2: एक तो ये कि भूपेन दा के गीतों में वहां के आवाम की तस्वीर नजर आती है, वो तस्वीर मजमूई भी है, इनफरादी भी, यानी कलेक्टिव भी है, इंडिविजुअल भी, एक पूरा लैंडस्केप है, और उसमें एक अकेला रिप्रेजेंटेटिव मजदूर, नुमाइंदा मजदूर, चाहे वो माहीगीर हो, रमैया मछेरा और उसकी रमणी हो, या पालकी उठाने वाला अपने साथियों के साथ डोला उठाया जा रहा हो, या रतनपुर के बागीचे में चाय की पत्तियां तोड़ती हुई लक्ष्मी और उसका जुगनू। क्या ऐसा नहीं लगता कि भूपेन हजारिका सिर्फ कविता नहीं गा रहे, आसाम का कल्चर गुनगुना रहे हैं।

0: भूपेन जी, विद्या अध्ययन के दौरान और वैसे भी आप तो सारी दुनिया घूमे हैं, तो विश्व एकात्मता अथवा यानी विश्व बंधुत्व के बारे में भी आपने निश्चय ही कुछ सोचा और लिखा होगा।
1: जी, हम जो जब दुनिया देखे थे तो ऐसे देखे थे कि ड्रम मुंबसा से लेकर बेल्जियम कांगो तक
0: जी,
1: अफ्रीकन लोग कैसे ड्रम को यूज करते हैं, ये अध्ययन करने के लिए भी हम गए थे। इसलिए सारा दुनिया घूम के जब देखा कि ऐसे जैसे मिसिसिपी में सुना, डोंट क्राई माय मेलांकोली बेब, डोंट क्राई, मत रोना मेरा बेटा मत रोना। और इसके बाद ब्रह्मपुत्र में आके सुना, ओ बिहुरेनो बिरीना ओ आईता बिहुरेनो बिरीना पार। सो आई वांटेड टू बी ऑलवेज एन इटर्नल ट्रेवलर, तो इसलिए एक गाना लिखा था, आमी एक जाजाबर, आमी एक जाजाबर, पृथ्वी আমাকে আপন করেছে, ভুলেছি নিজের ঘর, ঘরই ভুল গে, সারা দুনিয়া হমারা ঘর হো গে। তো গুলজার জি নে বহুত আচ্ছি তরহ সে তো রূপান্তর কিয়ে থে, যাযাবর ট্রান্সলেশন কিয়ে হ্যায় আওয়ারা।
0: জি
1: হ্যাঁ, আওয়ারা।

0: संगीत का विस्तार अपार होता है, इसमें कोई दो मत नहीं। महान संगीतकार डॉक्टर भूपेन हजारिका को ये हमारी आदरांजलि थी। आज हमने उन्हें याद किया विविधा के इस अंक में, और अब कुछ कहने को बाकी नहीं रहा।
1: जी बिल्कुल, और संगीत की इन बातों में, इन्हीं यादों में डूबते हुए, लबरेज रहते हुए हम अपने श्रोताओं से आज विदा ले रहे हैं।
0: जी हाँ, अब दीजिए इस अंक को समेटने की इजाजत। आप सभी से अनुमति लेती हूँ मैं मनीषा जैन
1: और जयंत पात्रीकर,
0: हम दोनों ही का नमस्कार।
2: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: संगीतकार उत्तम सिंह,
1: मुझको हुई ना खबर,
0: एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे

0: ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज यादों की महफिल सजी है राकेश रोशन के सदाबहार गीतों की माला से। आज राकेश रोशन का जन्मदिन है, उनको विविध भारती परिवार की ओर से, आपकी तरफ से, हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्यक्रम का पहला गीत है लता मंगेशकर, किशोर कुमार, बिंदिया गोस्वामी और राकेश रोशन की आवाजों में। गीतकार हैं गुलजार, धुन है राजेश रोशन की, फिल्म का नाम है खट्टा मीठा।
1: तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है आशा भोसले, कार्यक्रम का अगला गीत है किशोर कुमार और अलका याग्निक की आवाजों में। गीत रचना इंदिवर की, संगीत रचना राजेश रोशन की, फिल्म का नाम है काम चोर।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे आशा भोसले की आवाज में। गीत लिखा है इंदिवर ने, संगीत है राजेश रोशन का, फिल्म का नाम है खून भरी मांग।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम, जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ, वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: साथियों, लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज को। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार हैं राजेश रोशन। फिल्म का नाम है खेल।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।
2: रात जिया

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम यादों की महफिल में अगला गीत सुनेंगे हम नितिन मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में। इस गीत को लिखा है इंदिवर ने, संगीत है राजेश रोशन का, फिल्म का नाम है किंग अंकल।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे येसुदास और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। गीत रचना राजेंद्र वर्मा की, संगीतकार है विजय बटालवीकर, फिल्म का नाम है बहू की आवाज।

0: का सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गड्डी ले
0: जो संगीत की साधना

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए आशा भोसले किशोर कुमार की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन, फिल्म का नाम है ढोंगी।

यादों की महफिल कार्यक्रम में अगला गीत है मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की आवाजों में। गीत के बोल हैं इंदीवर के, तर्ज है राजेश रोशन की, फिल्म का नाम है खुदगर्ज।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

सभी सुनने वाले दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। संगीत के इस सुरीले सफर में आप हैं हमारे हम सफर। ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। साथियों, एक बार फिर आपको बता दें क्या है आज की इबारत। मन का नगर था खाली, सूखी पड़ी थी डाली, होली के रंग फीके बेनूर थी दिवाली। एक मोड़ पर वो मुटियार मिली, मुझको तो रांझे की हीर लगी। खोया मैं उसकी वो मेरी बातों में, और समा हुआ रंगीन। जाना था जापान, पहुंच गई चीन। करे पूजा जमाना जिसकी, वो तस्वीर हो तुम, न जाने किसकी किस्मत में हो तुम। इजाजत हो तो हम भी मुकद्दर आजमाएं, मीठे पान दी गिलौरी, रास्ता नाप रही जुगनी से। कह दूं तेरे बिन मर जाना, मैं तेनु प्यार करना। तुझे पाके जमाने की खुशी पाई है, तेरी उल्फत ये रंग लाई है। हो उजाला या अंधेरा, कहीं ना छूटे हाथ मेरा, कोई मेरा ना तेरे बिन साथ निभाना मेरा। शोला है या बिजुरिया, उतर जाए रगों में तो नशा है, आदत पड़ जाए तो सजा है। इसलिए आज झूम ले, आसमां को चूम ले, ये अनमोल जमाने फिर नहीं आने वाले। तो सुरीला सफर के हमारे बहुत सारे साथी हम सफर हमें बहुत सारे संदेशे और संदेश पहले ही लिख चुके हैं और लगातार लिख रहे हैं, तो हम पहले पढ़ लेते हैं आपके कुछ संदेश।

इश्क के रंग में डूबे दिलों की रंगत रौनक को इजाफा करती रंगीन बनाती रूमानी गानों से सजी इबारत है ये। रस्मो रिवाज और त्योहार सभी में महबूब के दीदार की तमन्ना रहती है। इन्हीं हसरतों उमंगों तरंगों में दिलों की दुनिया सिमटी रहती है। सारी बातों की एक ही बात होती है, मोहब्बत मोहब्बत और मोहब्बत। आज सुरीला सफर वाहन के साथ रास्ते सड़कों पर तय होने वाला है। मौसम सुहाना है, सफर भी आनंददायक रहेगा। तस्वीर शब्द पर आधारित हिंदी फिल्मों के कई बेहद लोकप्रिय और सदाबहार गाने हैं। इनमें से सबसे हिट गाना तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है जो इनको बहुत पसंद है। पर आज बात तस्वीर की नहीं होगी। आज की इबारत में तो जैसे नए पुराने यादगार गीतों की पूरी महफिल सजी है। इन गीतों का जादू यही है कि इनके बोल हमारी भावनाओं को हमसे पहले पहचान लेते हैं। जो बात हम किसी से कह नहीं पाते वही बात गीत बड़ी आसानी से हमारे दिल की आवाज बनकर कह देते हैं। शायद इसीलिए गाने सुनते हुए हम सिर्फ संगीत नहीं सुनते बल्कि अपना ही कोई बीता हुआ पल, कोई रिश्ता और अपने मन की अनकही कहानी सुनते हैं। गीत खत्म हो जाता है लेकिन उसका एहसास देर तक दिल में गुनगुनाता रहता है। बिल्कुल सच बात है ये। मन में कुछ चीजें समय बीतने के साथ खुद ब खुद स्पष्ट हो जाती हैं। जिंदगी में खुशी आएगी तो दुख भी आएगा, असुरक्षा आएगी तो डर भी आएगा। सो जो है वो आज इसी पल में है, शोला हो या फिर चमकती बिजुरिया। जिंदगी में कुछ ना कुछ हमेशा झेलना पड़ता ही है, तो इन चमकते गीतों के सहारे हम तय करेंगे आज का सुरीला सफर। जी हाँ बिल्कुल। कुछ मुलाकातें उम्र नहीं पूछती, बस दिल में उतर जाती हैं और फिर बरसों बाद भी यादों की खिड़की खोलो तो वही रंगीन शाम, वही हाथ और वही अधूरा सा सफर सामने बैठा मिलता है। मन के खाली नगर में किसी की तस्वीर उभरने के खूबसूरत रूहानी एहसास को बयां करती है ये। वो तस्वीर एक ठंडी हवा के झोंके की तरह पूरे वजूद को महका देती है और सालों का खालीपन को रूहानी एहसास से भर देती है। आवाज की दुनिया के दोस्तों, फिल्मों में मुख्य अभिनेता का कार, टैक्सी, ट्रक ड्राइवर का किरदार निभाना भारतीय सिनेमा में काफी लोकप्रिय रहा है। ऐसी फिल्मों में अक्सर एक्शन, इमोशन और सफर का बेहतरीन तालमेल देखने को मिलता है। तो ऐसी ही कुछ मशहूर फिल्मों के गीत हमने लिए हैं आज के सुरीला सफर के लिए, जिसमें हीरो मुख्य रूप से किसी गाड़ी को चलाने का काम करते हैं। ১৯৭১ की क्लासिक बॉलीवुड फिल्मों में से एक थी कारवां। धोखे से कराई गई शादी से घर से भागी लड़की सुनीता और बंजारों के दल के साथ ट्रक चलाने वाले मोहन, सफर के दौरान दोनों को हुआ एक दूसरे से प्यार और दूसरी तरफ सुनीता की तलाश में उस कारवां के पीछे ओंडे। रोमांचक मोड़, एक्शन और गानों के दरमियान साजिश का पर्दाफाश होता है। खलनायक अपने अंजाम तक पहुंचते हैं और मोहन सुनीता की प्रेम कहानी होती है पूरी। तो बताइए कौन थे मोहन सुनीता और खलनायक, और इस फिल्म के निर्देशक का नाम भी बताएं हमें। तब तक आइए सुनते हैं इस गीत को, यानी कि आइए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ कार्यक्रम की, जिसमें आवाजें हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन।

साथियों अपने विचार, अपनी बातें, अपने पैगाम और संदेश आपने भेज दिए हैं जो हम तक पहुंच गए हैं और लगातार आप भेज रहे हैं, तो उन सारी बातों को, संदेशों को

हम इस कार्यक्रम में पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे और सुरीला सफर में आगे बढ़ते जाएंगे। फिल्म का नाम था कारवा, जीतेंद्र आशा पारेख, रूना ईरानी, मदनपुरी और जूनियर महमूद ने इस फिल्म में भूमिका निभाई थी और निर्देशक थे नासिर हुसैन। हमारे साथियों ने लिखा है कि राजेश खन्ना और देव आनंद के बिना कोई सफर सफर नहीं होता जिंदगी का। एक वक्त था जब जिंदगी बेरंग थी, फिर तुम आए और सब कुछ बदल गया। हम एक दूसरे की बातों में ऐसे खोए कि दुनिया को भूल गए। तुम किसी हसीन ख्वाब जैसी हो और तुम्हें अपना बनाने की चाहत इस दिल में है। तुम्हारे साथ से जिंदगी मुकम्मल लगती है, इसलिए अब हर हाल में मेरा साथ निभाना। तुम एक खूबसूरत लत की तरह हो, चलो आज के इस हसीन पल को पूरी शिद्दत से जी लेते हैं, क्योंकि ये वक्त दोबारा नहीं आने वाला। मन भी अजीब सा मुसाफिर है, कभी खुद में ही सफर करता है, कभी खामोश रहकर कह देता है सब कुछ, कभी कहकर भी कुछ नहीं कहता। मुकद्दर आजमाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। मेरी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद और जॉब लगने के बाद मेरे मन का नगर था खाली, सूखी पड़ी थी डाली। मैं बताना चाहूंगा कि मेरे मन के नगर को भरा और सूखी डाली में हरियाली भी आई जब मेरे जीवन में आई मेरी पत्नी यानी के मेरी घरवाली। साथियों, टैक्सी कार या बसों से आपने कोई सुहाना सफर किया तो होगा, तो कहां कहां की सैर की उन खूबसूरत यादों को बातों को हमारे साथ बांटिए और लिख दीजिए हमारे FB पेज पर। टैक्सी चोर इस एक्शन थ्रिलर मूवी में मिथुन चक्रवर्ती ने मुख्य भूमिका निभाई थी, पर हम बात करेंगे खुद्दार। इस सुपरहिट फिल्म में महानायक ने एक ईमानदार टैक्सी चालक का रोल प्ले किया था जो अपने उसूलों के लिए लड़ता है। तो बताइए गोविंदा यानी कि उस महानायक का नाम और इस गीत में कौन सी अभिनेत्री उनके साथ है उसका भी नाम बताएं। और इस गीत में आवाजें हैं किशोर कुमार, लता मंगेशकर की, गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं राजेश रोशन।

फिल्म आशा का गीत याद आ रहा है, जाने हम सड़क के लोगों से, जितेंद्र उसमें ट्रक चलाते हैं। अगला मैसेज है कि सफर जीवन का हो, किसी मंजिल तक जाने का हो, किसी के दिल तक पहुंचने का हो, या सुरीला सफर विविध भारती के साथ हो, हम तो हर सफर को एंजॉय करते हैं क्योंकि असली मजा और सुनहरी यादें सफर की होती हैं। मंजिल या मकाम पर पहुंचने के बाद भी वही हमारे जहन में रहती हैं।

सबसे लंबी सड़क मार्ग का सफर मेरा कटक से पुणे का था। काफी रोमांचक था। चिल्का झील, घने जंगलों, पहाड़ों से गुजरते हुए पहली रात, विशाखापट्टनम समुद्र किनारे दूसरी रात, और हैदराबाद में गुजरने के बाद सोलापुर होते पुणे पहुंचे। मैं, मेरी पत्नी, बेटा, बेटी के संग सफर के हमने खूब मजे लिए। आवाज की दुनिया के हमारे दोस्त हमारी ही तरह इबारत लिखना सीख गए हैं। गीतों के इस सफर में बढ़ते हैं अब आगे। बेहतरीन लोकेशन और रोमांटिक फिल्म कश्मीर की कली, जिसमें एक अमीर बिजनेसमैन राजीव लाल को एक सीधी साधी फूल बेचने वाली लड़की चंपा से प्यार हो जाता है, और पेशे से ट्रक ड्राइवर मोहन चंपा पर बुरी नजर रखता है और उसके गरीब पिता दीनू को ब्लैकमेल करता है। कहानी कई उतार चढ़ाव, गलत पहचान का नाटक, खलनायकों की चालें, और अंत में सभी गलत फहमियां दूर होकर एक सुखद मिलन होता है। तो किस खूबसूरत लोकेशन पर यह फिल्म बनाई गई थी। वैसे तो उसमें फिल्म के नाम में ही वो बात छुपी है। और राजीव, चंपा, मोहन की भूमिकाओं में कौन से कलाकार थे और निर्देशक का नाम भी बताएं। वैसे ये जो गाना अभी आप सुनेंगे, इस ट्रक में भेस बदल कर गाना कौन से अभिनेता गा रहे हैं, और गीत में आवाज है मोहम्मद रफी की, गीतकार हैं SH बिहारी, संगीतकार हैं OP नैयर, फिल्म का नाम है कश्मीर की कली।

साथियों, आपके जवाब हमें मिले हैं। मुख्य कलाकार थे शम्मी कपूर, शर्मिला टैगोर, प्राण, नजीर हुसैन, मदन पुरी और टुनटुन। कश्मीर की कली इस फिल्म की शूटिंग श्रीनगर और वहां की मशहूर डल झील और उसके आसपास की खूबसूरत वादियों में की गई थी। निर्देशक थे शक्ति सामंत और कश्मीर की कली ये फिल्म थी शर्मिला टैगोर की पहली हिंदी फिल्म। हमारे साथियों ने हमें कुछ और मैसेज लिखे हैं कि फिल्म नमकीन का गीत सफर में होता है ट्रक में संजीव कुमार गाते हैं, ठीक है। फिल्म 9-2-11 का गीत हम है राही प्यार के देव आनंद ट्रक चलाते हुए गाते हैं और फिल्म जौहर महमूद के गाने हम दो दीवाने मिलके भी सफर में गा रहे हैं। साथियों, अब बात करते हैं बॉलीवुड की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक राजा हिंदुस्तानी की, जिसमें आमिर खान एक सीधे साधे टैक्सी ड्राइवर राजा की भूमिका में नजर आए थे, जिसे एक बेहद अमीर लड़की से प्यार हो जाता है। तो अब ये बताइए कि टैक्सी ड्राइवर राजा किस इलाके में टैक्सी चलाते थे और कौन थी वो अमीर लड़की, और लड़की की माता जी की भूमिका में नजर आने वाली अभिनेत्री का भी हमें नाम बताएं, और साथ में हमें ये भी बताएं कि इस फिल्म में जो छोटा बच्चा था वो आजकल एक बड़ा अभिनेता है, तो उस छोटे बच्चे का भी हमें नाम बताएं। साथियों, हम आपसे जानना चाहते हैं कि कभी कभी अक्सर लोग टैक्सी, रिक्शा, बसों में अपना कीमती सामान भूल जाते हैं, तो अचानक से, मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि जो टैक्सी चालक होते हैं वो पूरी ईमानदारी से आपका वो कीमती सामान लौटा देते हैं। तो कभी कुछ ऐसी बातें आपके साथ हुई या आपने देखी या आपने सुनी हो तो वो भी हमें लिख दीजिए, हम आपके सारे कमेंट्स को पढ़ रहे हैं। तो लीजिए सुनिए उदित नारायण की आवाज में ये गीत, गीतकार हैं समीर और संगीत है नदीम श्रावण का।

दोस्तों आपके जवाब हमें मिल गए हैं। फिल्म राजा हिंदुस्तानी की ज्यादातर शूटिंग ऊटी, तमिलनाडु, मैसूर, कर्नाटक और उत्तराखंड के रानीखेत में हुई और टैक्सी ड्राइवर राजा एक काल्पनिक इलाके पालनखेत में अपनी टैक्सी चलाते थे। आमिर खान, करिश्मा कपूर, सुरेश ओबराय, जॉनी लीवर, कुणाल खेमू, अर्चना, पूरन सिंह, मोनिश बहल, टीकू तलसानिया, फरीदा जलाल, नवनीत निशान और वीरू कृष्णन इस फिल्म में नजर आए थे। हमारे एक साथी ने लिखा है कि भूटान में जब मैं गया था तब गर्मी का मौसम था, फिर भी गर्मी में बहुत ही मजा उठाया हम लोगों ने। अगला ये मैसेज है कि आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। सफर में गाए जाने वाले गीत एक दो नहीं बहुत सारे हैं, जैसे कि परिचय में मुसाफिर हूँ यारो। और एक साथी ने लिखा है कि सुरीला सफर का ये सफर सचमुच बहुत ही रोमांचक सफर है, जिसमें हम अपनी बातों को यहाँ पर रखते हैं।

साथियों, सड़क पर तो हम सभी रोज चलते हैं, गुजरते हैं, पर एक बेहद चर्चित रोमांटिक थ्रिलर फिल्म आई थी सड़क, जिसमें संजय दत्त ने रवि नाम के एक टैक्सी ड्राइवर का किरदार निभाया था। तो इस फिल्म की अभिनेत्री और संजय दत्त के दोस्त के रोल में नजर आने वाले अभिनेता और खलनायक के नाम भी हमें लिख दीजिए, साथ ही निर्देशक का नाम भी लिखकर भेजें। इस गीत में आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की। गीत को लिखा है समीर ने, संगीत है नदीम श्रावण का, फिल्म का नाम है सड़क।

साथियों, आपके जवाब हमें मिले हैं पूजा भट्ट, संजय दत्त, दीपक तिजोरी, नीलिमा आजम, सदाशिव अमरापुर का जो महारानी के किरदार में नजर आए थे, अवतार गिल, जावेद खान, पंकज धीर और निर्देशक थे महेश भट्ट। साथियों, आपने कभी ट्रक की सवारी की है या उसमें बैठकर किसी शादी में गए हैं या ट्रक से जुड़ी कोई बात हो तो वो भी हमें बताएं। खेती करने में ट्रक का कितना और कैसा योगदान होता है वो भी बताएं। और अब बात उस ब्लॉकबस्टर मूवी की जिसमें सनी देओल पेशे से एक देसी ट्रक ड्राइवर के रोल में नजर आते हैं और इस फिल्म में ट्रक सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि कहानी का एक अहम हिस्सा भी है। तो उस फिल्म का नाम और सनी देओल की भूमिका का नाम, निर्देशक का नाम भी बताएं। वैसे इस फिल्म में सनी देओल ने एक चीज उखाड़ ली थी, क्या थी वो चीज उसका भी नाम लिख दे। तब तक आइए सुनते हैं ये गीत जिसमें आवाजें हैं उदित नारायण और साथियों की, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं उत्तम सिंह।

हमारे साथियों ने जवाब लिख दिए हैं हमारे पेज पर। सनी देओल की भूमिका वाले किरदार का नाम था तारा सिंह, साथ में थे अमीषा पटेल, अमरीश पुरी, विवेक शौक, सुरेश ओबराय और गदर। एक प्रेम कथा में तारा सिंह ने जमीन से सीधे एक लोहे का हैंडपंप उखाड़ लिया था, जिसे हिंदी फिल्मों के इतिहास के सबसे लोकप्रिय सीन्स में गिना जाता है। और इस फिल्म के निर्देशक हैं अनिल शर्मा। राजा हिंदुस्तानी इस फिल्म को देखकर जब जब फूल खिले वाले शशि कपूर और नंदा याद आ जाते हैं हमें। साथी ने लिखा है कि मजेदार मनोरंजक कार्यक्रम चल रहा है और मेरी सात गीतों की लिखी हुई इबारत में से छठे नंबर पर लिखा हुआ गीत भी शामिल हो गया है। और एक साथी ने लिखा है कि सड़कों के सफर में हम कई बार ट्रक्स और सामान ले जाने वाली गाड़ियों के पीछे लिखी हुई लाइनें जो लिखी होती हैं उसे पढ़ते हैं, जैसे कि अनारकली अरे बढ़कर चली, जो सफर प्यार से कट जाए वो प्यारा है सफर, नहीं तो गर्दिशों के दौर का मारा है सफर, और बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं हाईवे की। इस फिल्म में रणदीप हुड्डा महावीर भाई नाम के एक ट्रक ड्राइवर और किडनैपर की भूमिका में नजर आए थे और नायिका के साथ भारत के अलग अलग रास्तों पर ट्रक के जरिए वो सफर करते हैं। तो बताइए उन इलाकों के लोकेशन के नाम और फिल्म के निर्देशक का भी नाम बताएं, साथ ही उन जगहों के बारे में आप कोई खास जानकारी रखते हो तो वो भी हमारे साथ आप साझा कर सकते हैं। और आलिया भट्ट की पहली फिल्म का नाम क्या था वो भी लिख दें, और इस गीत में आवाजें किसकी हैं वो भी बताएं। गीतकार हैं इरशाद कामिल, संगीतकार हैं ए आर रहमान।

साथियों, आपके जवाब हम पढ़ देते हैं। निर्देशक हैं इम्तियाज अली और उनकी ये जो फिल्म हाईवे है, भारत के अलग अलग इलाकों में फिल्माई गई थी, जिनके नाम है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर। आलिया भट्ट की पहली फिल्म थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर और संघर्ष में उन्होंने बाल कलाकार के रूप में काम किया था और इस गीत में आवाजें थी सुल्ताना और ज्योति नूरानी की। साथियों, अब हम आपको सुनवा रहे हैं टैक्सी ड्राइवर का, इस फिल्म का गीत, और इस गीत का एक जवाब हमें जल्दी से लिखकर भेज दीजिए कि ये गीत किस पर फिल्माया गया है।

फिल्म का नाम था टैक्सी ड्राइवर, आवाज थी लता मंगेशकर की, गीत को लिखा था साहिर ने, संगीत था सचिन देव बर्मन का, और इस फिल्म में नजर आए थे देव आनंद, कल्पना कार्तिक, जॉनी वॉकर, और ये जो गीत फिल्माया गया था अभिनेत्री का नाम था शीला रमानी।

साथियों, सुरीला सफर के हम सफर बनकर आप हमारे साथ चले और अपने विचार, बातें, संदेश आपने हमारे साथ साझा किए, आप सभी को हम देते हैं धन्यवाद। और आज की तरह कल भी हमारे साथ तय कीजिए संगीत का ये सुरीला सफर देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: मिस सेंटा क्लॉस का घर कहाँ है?
1: चांद पे।
0: हमें भी वहाँ ले चलिए ना।
1: अच्छा।

ये विविध भारती है, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं आपके पत्र, आपकी पसंद के फरमाइशी गीत। और कार्यक्रम का पहला गीत जिसकी फरमाइशें भेजी है आप सभी दोस्तों ने, गांव जाखोद राजस्थान से पूजा खटक, बिमला देवी और शुभम दयाल खटक, चारकोप कांदिवली वेस्ट मुंबई से अनिल कुमार वैद्य, गांव पालधी महाराष्ट्र से इसी गीत को सुनना चाहते हैं संजय पाटिल, नरेंद्र पाटिल, शेखर पाटिल, चेतना पाटिल, मानसी पाटिल, किरण पाटिल और शैलाबाई पाटिल, कृष्णा कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी, सरताज बानो, उबैद अलीना, जुनैद रजिया मुआज और आयात मंसूरी, और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंदडाने, अर्चना प्रतिभा ताई और पद्माकर गोंदडाने। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का गीत किशोर कुमार और सपना मुखर्जी की आवाजों में। गीतकार हैं इंदिवर, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी। फिल्म का नाम है जांबाज़।

मन चाहे गीत कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत है लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में। नगमा निगार है आनंद बख्शी, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल, फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए। और इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइशी खत लिखे हैं आप सभी दोस्तों ने। राजनगर कांति निकेतन मधुबनी बिहार से कुशवेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा रिद्धि सिद्धि और कोमल गुप्ता ने, कुंवर कॉलोनी एमपी से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली और जंक्शन प्लॉट राजकोट से प्रभुदास कोटेचा, हंसाबेन कोटेचा और आशीष कोटेचा, खामगांव जिला बुल्डाना से करीम शाह, गणेश गरड़, शेख मोहसिन, लक्ष्मण उपासे, गोपाल काड़े और राम बाड़खे ने

ये विविध भारती है और इस समय आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद है आप सभी। कस्बा हरदुआगंज अलीगढ़ से मुन्ने मियां अंसारी, अयान अंसारी, नफीस अंसारी, शाहिद अहमद अंसारी और विंस टेलर। सदर नागपुर से कमल गोल्दा, अंकित गोल्दा, अभिषेक गोल्दा, प्रेम लता गोल्दा और समस्त गोल्दा परिवार। आमला ग्राम अंधारिया बैतूल एमपी से वीरेश झारे, योगेश झारे, त्रिवेश झारे और नवदीप। नेरदे वर्धा छिंदवाड़ा से पूजा देवी, बलराम पटेल,

के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी दोस्त। मालेगांव जिला वाशिम महाराष्ट्र से अरविंद साखरकर, सुनीता, रोहित, निखिल और दीपमाला साखरकर। रणपिसे नगर अकोला महाराष्ट्र से शिवराज भारती, कुमारी टीना भारती, तनिषा वेनो संगेफर, रीना रोहित, मनु गयालकर और राज भारती। कोपर गांव से पेंटर दारूवाला, मतिन दारूवाला, मसूदा दारूवाला, दिया और दानिश खान। बाला चौक यवतमाल से पत्र लिखा है मीना ताई, गायत्री, भूमि, नितिन, तनिश, मुकेश, दीपिका, लवीसा, शौर्य, शुभम, कल्याणी, कुकू और सुनीता श्रीवास ने। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा इस गीत को सुनना चाहते हैं, तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। आवाज है आशा भोसले की, गीत को लिखा है शहरयार ने, संगीत है खयाम का, फिल्म का नाम है उमराव जान।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए। आप सभी दोस्तों की पसंद पर खत लिखे हैं आपने। शैलू बाजार जिला वाशिम से नारायण गवार गुरु, सरला गवार गुरु, सचिन खाडेकर, दक्ष, आयुष पुरवा, निर्मोही और आधीराज ने, रिधोरा से बाबूलाल बोराखडे, गोकुला बोराखडे और मंगेश बोराखडे, दुर्ग रायगढ़ से गेंदालाल श्रीवास, कुशल और गेंदू भाई, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बलविंदर बीरक, जय तेग बीरक और मीका बीरक, रामना हड़दी से मोहम्मद आरिफ, फातिमा अरफा और एमएच शरीफ, जलगांव सोमनाथ से आपने खत लिखा है डॉक्टर नामदेव भुतेकर, अभिषेक भुतेकर, कार्तिक और अश्विनी भुतेकर, संभाजी नगर महाराष्ट्र से वैष्णवी जगदाड़े, हर्षुल साउंगी, संभाजीनगर भाव सिंह पूरा से वैभव और गौरव लोखंडे और बदनापुर से मेघराज युवराज कोलते, रिधोरा देवी और रुद्र कोलकर ने ये पत्र लिखे हैं। साथियों, लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये फरमाइशी गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, संगीतकार हैं रवि, फिल्म का नाम है आंखें।

साथियों, आप जो खत हमें लिखते हैं उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखें ताकि आपका नाम पता और फरमाइश पढ़ने में हमें आसानी हो। आपको बता दें, आज के मनचाहे गीत कार्यक्रम में हमें सहयोग मिला आकांक्षा विश्वकर्मा और चंचल वर्मा से। मन चाहे गीत कार्यक्रम में आज मैं थी आपके साथ सलमा सैयद, और विविध भारती से कार्यक्रम मन चाहे गीत की प्रस्तुतकर्ता हैं तेजश्री कामले।

0: विविध भारती। आज के नाट्य तरंग कार्यक्रम में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के बांग्ला उपन्यास चोखेर बाली का रेडियो नाट्य रूपांतरण आंख की किरकिरी का दूसरा भाग सुनवाया जाएगा, रूपांतरकार एवं निर्देशक नंदलाल शर्मा।
1: कौन तुम?
2: क्या पढ़ रही हो, जरा देखूं तो?
1: कुछ नहीं, ऐसे ही।
2: देखूं तो सही। अच्छा, विष वृक्ष पढ़ रही हो, और मैं तो समझा कि कोई गुप्त चीज होगी।
1: मेरे पास गुप्त क्या हो सकता है?
2: जैसे बिहारी की कोई चिट्ठी।
1: क्या क्या कहा तुमने?
2: अरे मैं तो परिहास कर रहा था।
1: छोड़ो मेरा हाथ। परिहास किसका कर रहे थे? यदि उनकी मित्रता के योग्य होते तो तुम्हारा परिहास मैं सह लेती। तुम्हारा मन छोटा है, मित्रता करने की शक्ति ही नहीं तुम्हें।
2: मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ।
3: महिंदा, ओह, बड़े समय में आ गया, किंतु ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। केवल एक बात कहने आया हूं। मैं काशी गया था, जानता नहीं था कि भाभी वहां है। बिना जाने उनके सामने जाकर अपराधी हुआ, पर उनसे क्षमा मांगने का अवसर नहीं मिला, इसीलिए तुमसे क्षमा मांगने आया हूं। मेरे मन को ज्ञान अज्ञान में यदि किसी पाप ने स्पर्श किया हो तो उसके लिए उन्हें किसी तरह का दुख ना सहना पड़े। बस
2: मैंने तो ना तुमसे दोष स्वीकार करने को कहा है ना स्वीकार करने को, तब तुम क्षमा मांगकर साधु बनने क्यों आए हो?
3: मैं
1: बिहारी लाला जी, तुम कुछ मत कहो। इस आदमी ने जो कहा है उससे इसी के मुंह पर कलंक लगा रहेगा।
3: अच्छा, मैं जाता हूँ।
1: लाला जी, मुझसे तुम्हें क्या कुछ भी नहीं कहना। यदि तिरस्कार करने की बात हो तो तिरस्कार करो। लाला जी कुछ तो बोलो। लाला जी,
2: हट जाओ मेरे सामने से। अरे, तुम्हारे बाएं हाथ की कोहनी से खून बह रहा है। ला, फिर मैं अभी पट्टी बांध देता हूं।
1: कुछ मत करो, गिरने दो खून।
2: कैसी बात कर रही हो? पट्टी बांधकर अभी एक दवा देता हूं, दर्द जाता रहेगा और घाव शीघ्र अच्छा हो जाएगा।
1: नहीं, इस दर्द को बना रहने दो, मुझे अच्छा नहीं करा रहा है।
2: मैंने अधीर होकर लोगों के सामने तुम्हें अपदस्त किया, इसके लिए मुझे क्षमा करो।
1: क्षमा किस लिए? अच्छा किया। मैं क्या किसी से डरती हूँ? जो लोग थक्का देकर चोट पहुंचाकर छोड़ जाते हैं वे ही क्या मेरे सर्वस्व हैं? और जो पांव पकड़कर रखना चाहते हैं वे कोई नहीं।
2: तुम मेरे प्रेम को कभी नहीं ठुकराओगी?
1: नहीं, मैं उसे माथे पर लगाकर रखूंगी।
2: चुन्नी, काशी से लौटने के बाद तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा हो गया है।
4: और तुम कैसे रहे?
2: अच्छा ही था। सुनो, मैं कॉलेज जा रहा हूँ।
4: आज इतनी जल्दी?
2: हाँ, कुछ आवश्यक कार्य है। अच्छा, चलता हूँ। महेंद्र, तू ये क्या कर रहा है? कभी तेरा मन आशा की ओर भागता है, कभी विनोदनी की ओर। आशा जब जब तेरे पास आती है तो उसकी ओर उपेक्षा का भाव रखता है और विनोदनी के पीछे पीछे भागता है। तुझे क्या मालूम कि उस सरल हृदय पर क्या बीतती होगी? लेकिन आज ना तो भोजन

0: के समय और न उसके बाद ही आशा आई। मैं तो सोच रहा था कि अपने प्यार दुलार से उसकी सारी वेदना को दूर कर दूंगा। आशा को अब भी मैं कितना प्यार करता हूं, वो बहुत कम स्त्रियों के भाग्य में होता है। और विनोदनी, आशा और विनोदनी दोनों के लिए मेरे हृदय में स्थान है और दोनों में से किसी को भी छोड़ने की जरूरत नहीं। ये मौसम, ये चांदी रात, लेकिन विनोदनी मुझसे दूर नहीं, नहीं नहीं, मैं भी उससे मिलूंगा। चल मुझे कमरे में।
1: विनोद,
0: बिस्तर बिछा है, विनोदनी कहाँ है?
2: कौन?
0: मैं हूं, मैं।
3: अरे महीन, इतनी रात को तू यहां कैसे? महीन, विनोदनी, महीन बहू को छोड़ इतनी रात कर यहाँ क्या करने आया था?
2: मुझे क्या मालूम, शायद किरकिरी के साथ कुछ खटपट हो गई होगी। आज भी समय से पहले कॉलेज चले गए, ना हमसे कुछ बोले ना कुछ कहा। चलो उनके कपड़े निकाल दो। अरे चिट्ठी देखो तो किसकी है? ये तो विनोदनी यानी किरकिरी की चिट्ठी, इनके नाम। हे भगवान, जरा पढ़ो तो। कल रात तुमने जो कुछ किया
4: उससे भी क्या तुम्हारी तृप्ति नहीं हुई? आज फिर नौकरानी के हाथ गुप्त चिट्ठी क्यों भेजी? चीची, वो अपने मन में क्या सोचती होगी? मुझे क्या तुम जगत में किसी के आगे मुंह दिखाने लायक नहीं रखोगे? तुम मुझसे चाहते क्या हो? प्रेम? तुम्हारी ये भिक्षा वृत्ति क्यों है? जन्म से तुम केवल प्रेम पाते आ रहे हो, तब भी तुम्हारे लोभ का अंत नहीं है? जगत में मुझे प्रेम करने और पाने का कोई स्थान नहीं है। इसी से मैं खेल खेल कर प्रेम का खेत मिटा लिया करती हूं। जब तुम्हारे पास अवसर था तब उस मिथ्या खेल में तुमने भी साथ दिया, किंतु खेल की छुट्टी क्या कभी समाप्त नहीं होती? अब घर में तुम्हारी पुकार हुई है, अब धूल झाड़कर घर जाओ। मेरे तो घर नहीं है। हाँ, मन ही मन अकेली बैठकर खेलती रहूंगी, तुम्हें नहीं बुलाऊंगी।
2: हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया? क्यों? क्या क्या ये हमारा संपूर्ण सर्वनाश है? मौसी, मौसी।

0: आज माँ ने मुझे रोज की तरह अभी तक आवाज नहीं दी, बात क्या है? चलो मैं स्वयं ही उनके पास भंडारे में जाती हूँ। माँ, माँ, माँ जान पड़ता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, बात भी है ऐसी है। उस रात देखो ना एकदम पागल की तरह खड़े हो गए, मुझे तो फिर नींद ही नहीं लगी। शायद शायद किरकिरी के साथ कुछ खटपट हो गई होगी, फैसले के लिए मुझे धर पकड़ना चाहा। रात भर सब्र कहा, आपके लड़के में माँ और चाहे हजार गुण हो पर धैर्य तो लेश मात्र भी नहीं है, इसीलिए अक्सर मेरे से उनका झगड़ा हुआ करता है।
1: बहू तुम झूठ बक रही हो, मुझे आज कोई बात अच्छी नहीं लग रही।
0: मुझे भी आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा माँ, तुम्हारे मन को चोट लगेगी इसीलिए झूठी बातों से तुम्हारे लड़के के गुण दोष ठगने की चेष्टा कर रही थी, किंतु जो हो गया उसे ठगा नहीं जा सकता।
1: अपने बेटे के दोष गुण मुझे मालूम है, परंतु तुम ऐसी मायावी हो ये मैं नहीं जानती थी।
0: कोई किसी को नहीं जानता माँ, अपने मन को ही क्या सब जानते हैं। तुमने क्या कभी अपनी बहू से द्वेष करके इस मायावनी से

0: अपनी लड़की का मन बहलाने की इच्छा नहीं की?
1: अभागिन, बेटे के बारे में तो माँ पर अपवाद रखती है, तेरी जीभ क्यों नहीं गिर जाती?
0: माँ, हम सब मायावनी की जाति की हैं। मेरे अंदर क्या माया थी ये मैं ठीक नहीं जानती, तुम जान गई। तुम में जो माया है उसे तुम नहीं जानती, मैं जान गई। माया थी अवश्य, अन्यथा ऐसी घटना ही न होती। मैंने कुछ जाने कुछ अनजाने जाल बिछाया और तुमने भी कुछ जानकर कुछ अनजाने बिछाया था। हमारी जाति का धर्म ही ऐसा है।
1: अभागिन, तू तू
2: विनोद,
0: जाओ मेरे कमरे से, तुम चले जाओ।
2: क्यों, क्या किया है मैंने?
0: क्या किया है? डरपोक, कायर, तुम्हें क्या करने की शक्ति है? ना तुम प्रेम करना चाहते हो ना कर्तव्य निभाना, फिर मुझे क्यों लोगों के सामने नष्ट किया चाहते हो?
2: मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, ये कह रही हो?
0: हाँ, मैं यही कह रही हूँ। लुका चोरी, ढकना उघाड़ना, कभी इधर कभी उधर, तुम्हारी चोरों जैसी प्रवृत्ति देखकर मुझे घृणा होती है। अभी अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता, जाओ यहाँ से।
2: तुम मुझसे घृणा करती हो विनोद?
0: हाँ, घृणा करती हूँ। बिहारी लाला जी।
3: अरे भाभी, आप कैसे?
0: यहाँ तुम्हारा आत्मीय स्त्रियों में कोई नहीं है?
3: आत्मीय भी नहीं, पराई भी नहीं। बुआ है, सो देश के मकान में रहती है।
0: तुम अपने देश के मकान में मुझे ले चलो।
3: तुम्हें क्या कहके वहां ले चलूंगा?
0: दासी कहके, मैं वहां घर का सब काम काज करूंगी।
3: ये बात मन में उठी कैसे?
0: महेंद्र मुझसे प्रेम करता है।
3: ये बात कोई नई नहीं है, दोबारा सुनने की इच्छा हो?
0: मेरी इच्छा भी नहीं।
3: महेंद्र जिस रास्ते पर चला जा रहा था, उसे उससे किसने हटाया?
0: मैंने, अपने हृदय की आग से मैंने महेंद्र का घर चलाया है। मैंने समझा था कि मैं उससे प्रेम करती हूँ, पर वो मेरी भूल थी।
3: प्यार करने वाली क्या इस प्रकार आग लगा सकती है?
0: वो तुम्हारे शास्त्रों की बात है, अभी उसे समझकर चलने की बुद्धि मुझ में नहीं है। सुनो लाला जी, मैं निर्लज्ज होकर कह रही हूँ, एक तुम्हें मुझे बचा सकते हो। महेंद्र मुझे चाहता है पर अंधा है, मुझे समझता नहीं। एक बार मुझे लगा था तुम मुझे समझ गए हो, शायद तुमने मुझ पर श्रद्धा भी की थी। सच कहना, छिपाना नहीं।
3: हाँ, की थी।
0: तुमने भूल नहीं की थी, किंतु यदि समझने ही लगे थे, श्रद्धा ही करने लगे थे, तो वहीं क्यों रुक गए? मुझे प्रेम करने में तुम्हें क्या बाधा थी? मैं आज निर्लज्ज होकर तुमसे कह रही हूं, तुमने भी मुझे प्यार क्यों नहीं किया? मेरा चला भाग्य, तुम भी आशा के प्रेम में थी। नहीं, तुम क्रोध न कर सकोगे, मैं कोई बात नहीं छुपाऊंगी। तुम आशा को प्यार करते हो, ये बात जब तुम स्वयं नहीं जानते थे तब भी मैं जान गई थी। आशा में तुमने क्या देखा मैं समझ नहीं पाती। विधाता के पुरुष को आंख के साथ अंतर्दृष्टि कुछ भी नहीं देते, तुम लोग क्या देखकर भूल जाते हो?
3: भाभी, अब तुम जो सुनाओगी सुनूंगा, पर जो बात कहने की नहीं है वो ना कहो, यही मेरी प्रार्थना है।
0: लाला जी, मैं जानती हूं तुम्हें कहां पीड़ा हो रही है, किंतु जिसकी श्रद्धा मुझे मिली थी और जिसका प्रेम पाने पर मेरा जीवन सार्थक हो जाता, उसके पास इस रात मैं संपूर्ण भय और लज्जा छोड़कर आई हूं। उसमें मेरे मन की कितनी वेदना छिपी है,

0: अपना सुख दुख क्या कुछ नहीं? तुम्हारी आशा का भला हो, तुम्हारे महेंद्र की घर गृहस्थी का भला हो, इसके लिए मैं अपने समस्त दावों को छोड़ दूं? इतनी भली मैं नहीं हूं, धर्मशास्त्र की पोथियां मैंने इतनी नहीं पढ़ी हैं। मैं जो छोड़ूंगी उसके बदले मुझे क्या मिलेगा?
1: सुनो, मैं भी तुमसे एक बात स्पष्ट कहता हूं कि ये सब जो तुमने कहा है उसका अधिकांश तुम्हारा नहीं है। छोटे दर्जे के नाटक उपन्यास तुमने पढ़े हैं और उससे ही चुराया हुआ है। तुम अगर नितांत अबोध बालिका रहती तो भी संसार में प्रेम से वंचित न रहती। नाटक की नायिका स्टेज पर शोभा देती है, घर में उसे लेकर काम नहीं चल सकता।
0: तुम मुझे क्या करने को कहते हो?
1: असाधारण कुछ न करो, साधारण स्त्रियों की शुभ बुद्धि जो कहती है वही करो। देश चले जाओ, मैं जनानी डिब्बे में बैठा कर तुम्हें देश तक पहुंचा दूंगा।
0: तो आज की रात यहीं रह जाऊं?
1: नहीं, मुझे अपने ऊपर इतना विश्वास नहीं
0: है। बस इतनी दुर्बलता बनाए रखना लाला जी, पत्थर की देवता की तरह बिल्कुल पवित्र ना हो जाना, किसी बुरे से प्यार करके सरा बुरे बने रहना।
1: विनोद, मैं
0: जीवन सर्वस्व जानती हूं कि सदा के लिए तुम मेरे नहीं हो सकते, किंतु आज एक मुहूर्त के लिए मुझे प्यार करो, उसके बाद मैं अपने उसी वन जंगल में चली जाऊंगी और किसी से कुछ न चाहूंगी। मरण पर्यंत मन में रखने लायक तुम कुछ तो दे दो मुझे, कुछ तो दो।
1: रात 1 बजे पैसेंजर ट्रेन जाती है।
0: मैं उसी गाड़ी से चली जाऊंगी। मैंने तुमसे प्रार्थना की थी कि तुम मुझे चिट्ठी अवश्य लिखना, मैं रोज तुम्हारी चिट्ठी पाने की प्रतीक्षा करती हूं। तुम मेरे विचारक हो, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूं। तुम्हारी 2 लाइन की चिट्ठी ही मेरे निर्वासन में मेरा आहार है। कहते हैं एकाग्र मन से जिसे पुकारा जाता है वह अवश्य आता है। मैं भी तुम्हें पुकार रही हूं, मेरा जीवन सूना है। इस सूनेपन में एक बार तुम आ जाओ, एक क्षण के लिए आ जाओ, तुम्हें आना ही होगा। मैं किसी तरह तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम्हें आना ही होगा। तुम आ जाओ, एक क्षण के लिए आ जाओ, तुम्हें आना ही होगा, तुम्हें आना ही होगा। आ गए प्रभु।
2: आ गया विनोद।
0: तुम चले जाओ यहां से, मैं कहती हूं चले जाओ यहां से, चले जाओ यहां से।
2: मैं इतना कायर नहीं कि तुम्हें इस लोक निंदा की आग में छोड़कर चला जाऊं यहां से। तुम्हें ले ही जाऊंगा, उसके बाद मुझे छोड़ देने की इच्छा हो तो छोड़ देना, मैं कुछ भी बाधा नहीं बनूंगा। मैं तुम्हें छूकर कसम खाता हूं कि तुम जो इच्छा करोगी वही होगा। मैंने अविश्वास के कितने ही काम किए हैं, परंतु आज मेरा विश्वास ना करो। चलो, मैं सवारी लेकर आया हूं।
0: चलो, मैं चलती हूं।
3: जल्दी चलकर माँ को देखिए, बड़ा कष्ट हो रहा है उन्हें।
4: माँ, प्रणाम माँ।
5: बहुत दिनों से तुझे देखा नहीं रे, तू है तो अच्छी तरह।
4: माँ, तुमने अपनी बीमारी का समाचार क्यों नहीं दिया? सुनकर मैं एक क्षण भी रुक सकता था,

0: गोकू, अरे क्या मैं जानती नहीं
1: माँ,
0: तुझे सिर्फ पेट पे नहीं रखा रे, अन्यथा तुझसे बढ़कर दुनिया में मेरा कौन है रे?
1: माँ,
0: मुझे बहुत दुबला हो गया रे, तेरे देख रेख करने वाला कोई नहीं, अब तो बहू लिया मछली बहू।
2: हाँ जी जी,
0: इसका भार तुम पर रहा, इसे सुखी रखना।
2: न्यारी जरा बाहर तो आ।
1: कहो काकी।
2: तुझे नहीं मालूम क्या, महेंद्र विनोदनी को लेकर कहीं चला गया है। एक बार महेंद्र को तो बुला नहीं लाएगा, और देरी करना उचित नहीं है।
1: अच्छा काकी, तुम माँ की पथ्य और दवा का ख्याल रखना। काकी काकी, महेंद्र का उद्धार मैं करूंगा।
3: विनोद, ये क्या तुमने फूलों से अपनी बेकी गूंथी? गले में भी फूलों का हार, ये सादा मोटे कपड़े, सारा कमरा, ये बिछोना, सब तरफ फूल ही फूल। क्या तुम मेरा इंतजार कर रही हो? ये बिछोना जी चाहता है।
4: नहीं नहीं, तुम जाओ, इस बिछोने पर मत बैठना।
3: तो फिर ये श्रृंगार किसके लिए किया है?
4: जिनके लिए किया है वे मेरे हृदय के भीतर हैं।
3: कौन है वो बिहारी?
4: उनका नाम तुम मुंह से न लो।
3: उसी के लिए तुम मेरे साथ इधर उधर घूमती हो?
4: हाँ, उन्हीं के लिए।
3: उसका पता ठिकाना जानती हो?
4: किसी न किसी तरह जान ही लूंगी।
3: मैं किसी भी तरह जाने नहीं दूंगा।
4: न जानने दोगे ना सही, पर मेरे हृदय से उन्हें किसी भी प्रकार निकाल न सकूंगी।
3: ओ, तुम मर क्यों ना गई? तुम्हारे मरने से कितना मंगल होता।
4: जब तक बिहारी की आशा है मैं मर नहीं सकती।
3: अगर तुम मेरी नहीं हुई तो बिहारी की भी नहीं हो सकती, समझी?
4: मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से।
3: मेरी माँ रो रही है, मेरी स्त्री रो रही है, उनके आंसू मुझे दूर से ही जला रहे हैं। तुम्हारे मरे बिना मुझे उनके आंसू पहुँचने का अवसर नहीं मिलेगा।
4: मैं कहती हूँ तुम अपने घर जाओ, जाओ यहाँ से, तुम्हारा कुछ भी नहीं है यहाँ, कुछ भी नहीं। ओ, तुम नहीं मानोगे, क्यों मुझे बार बार तंग करने के लिए आ जाती हो तुम?
1: महेंद्र
4: नहीं है, वो शहर गया है।
1: अच्छा मैं चलता हूँ।
4: तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, तुम्हें थोड़ी देर बैठना होगा।
1: कहो क्या कहना है?
4: तुम जो कुछ मन में समझ रहे हो वो बात नहीं है, इस घर को किसी कलंक ने नहीं छुआ है। ये फूल तुम्हारी ही पूजा में सूख गए हैं, तुम्हें यही बैठना होगा। बैठो।
1: लो, बैठ गया।
4: तुमने दया पूर्वक मुझे ये स्थान दिया है, और दूर रहकर भी मैं इसकी रक्षा करूंगी। अच्छा बताओ, मैंने गांव से जो पत्र लिखा था उसे तुमने खोलकर उत्तर दिए बिना महेंद्र के हाथ वापस क्यों कर दिया?
1: मुझे तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला, और ना ही महेंद्र के हाथों मैंने कोई चिट्ठी वापस की।
4: अच्छा अब समझ में आया। सुनो, मैं सब बातें तुमसे कहती हूँ, विश्वास करोगे तो अपना सौभाग्य मानूंगी, ना करोगे तो तुम्हें दोष ना दूंगी।
1: ना ना ना, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, बिना कुछ कहे ही मैं तुम्हारा विश्वास करता हूं। मैं खुद तुमसे घृणा नहीं कर सकता, बस अब तुम एक शब्द भी मत कहो।
4: तो भी बताए बिना जी न सकूंगी, मैंने तुम्हें मन में रखा है, इसीलिए पवित्र बनी रही। आज मैं तुम्हारे चरणों को

0: que Dios. Mira, muy linda Snehua, Mira, muy linda Snehua.
1: अच्छा तो अब रंग भूमि से महेंद्र का प्रस्थान और बिहारी का प्रवेश।
2: सुनो महेंद्र, तुम्हें विनोदनी का अपमान करने का अधिकार नहीं है। मैं उससे विवाह करूंगा। और सुन लो महेंद्र, तुम्हारी मां मृत्युशैया पर पड़ी है, उसके बचने की कोई आशा नहीं। मैं आज रात की गाड़ी से विनोदनी को लेकर चला जाऊंगा।
1: ठीक है, मैं जाता हूं।
0: सुनो, ये बात तुम्हारे मुंह से निकली कैसे? मेरा उपहास कर रहे हो?
2: नहीं, मैं सचमुच तुमसे विवाह करूंगा।
0: इस पापिष्ठा के उद्धार के लिए?
2: नहीं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं इसलिए।
0: बस यही मेरा चरम पुरस्कार है। इतना जो तुमने स्वीकार किया है उससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। मिलने पर भी वो रहेगा नहीं, धर्म उसे कभी सहन नहीं करेगा।
2: क्यों नहीं करेगा?
0: जी जी, ये बात सोचने पर भी लज्जा होती है। मैं विधवा हूं, निंदिता हूं, समस्त समाज में तुम्हें लांछित करूं ये कभी नहीं होगा।
2: किंतु विनोदी, मैं तुम्हें प्यार करता हूं।
0: सुनो, दूसरे जन्म में तुम्हें पाने के लिए तपस्या करूंगी। इस जन्म में और कोई आशा नहीं करती। मुझसे विवाह करके तुम सुखी ना हो सकोगे, तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। मैं भी संपूर्ण गौरव खो दूंगी। तुम सदा से निर्लिप्त और प्रसन्न रहते आए हो, आज भी वही बने रहो। मैं अन्नपूर्णा काकी के साथ काशी चली जाऊंगी।
2: भाभी, न जाने इस जिंदगी में फिर आपसे मिलना हो या ना हो, मैं तुम्हारी कोई निशानी अपने पास रखना चाहता हूं।
0: जी जी
2: भाभी, मैं क्या तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता?
0: तुम तो बहुत पहले ही मुझे तो दे चुके हो। वो मेरे शरीर का भूषण है, उसे मरते दम तक कोई नहीं ले सकता। मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
2: मैं समझा नहीं, मैंने ऐसा तुम्हें क्या दिया है?
0: भूल गए लाला जी, ये देखो।
2: अरे, ये तुम्हारे हाथ में चोट का निशान?
0: हाँ लाला जी, एक दिन गुस्से में घृणा के साथ तुमने मुझे धक्का दिया था ना, मेरे हाथ में चोट लगी। उस खाप का ये निशान उसी दिन से मेरी आत्मा का आभूषण बन चुका है।
2: भाभी,
0: लाला जी, भगवान तुम सबको सदा सुखी रखे, सदा सुखी रखे।

आंख की किरकिरी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बांग्ला उपन्यास चोखेर बाली के इस रेडियो नाट्य रूपांतरण का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। रूपांतरकार एवं निर्देशक नंदलाल शर्मा। ये हमारे आकाशवाणी जयपुर केंद्र की प्रस्तुति थी। इसी के साथ आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रोग्राम है भोर सुहानी। जिंदगी भी एक सुंदर संगीत की तरह है, कभी सुर ऊंचे होते हैं तो कभी धीमे। जरूरी ये नहीं कि हर सुर हमारे मन के मुताबिक हो, जरूरी ये है कि हम अपनी धुन को विश्वास के साथ निभाते रहें। दूसरों से तुलना करने की बजाय अपनी जिंदगी का गीत अपने अंदाज में गाइए।